जगजीत सिंह एवं साथियों की आवाज में अभी आपने ये भजन सुना। अगला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं हेमा देसाई के स्वर में।

उमा देसाई के स्वर में अभी आप ये भजन सुन रहे थे। इसी के साथ भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान, मुख्य स्वर पंडित जसराज एवं साथियों की।

हिंदी में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त चरण जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति भक्त कवि पूछती है कि उसने अनेक पुराणों वेद और शास्त्र करण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में

अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन के 10:00। 10:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम अंगना।

1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 1:15 और 2:30 पर। रोजगार सूचना आप सुनते हैं दिन के 2:10 पर। 3 बजे होगा हमारा कार्यक्रम बज्जी का कार्यक्रम लोकगीत। युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत आप सुनेंगे तरुण कुसुम शाम 5 बजे। 5:40 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ नए फिल्म संगीत। विद्यापति गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। 6:25 पर आप सुन सकेंगे मैथिली संवाद हमारे पटना केंद्र। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नव ऊर्जा शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे होगा हमारा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 7:52 पर। 8:15 पर आप सुनते हैं मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत आप सुनेंगे सर्वभाषा रात्रि 9:30 पर। देववाणी 9:45 पर।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तन्त्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। 50वें G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः संयुक्त रूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतॄणाम् औपचारिक रूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्य परी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग है।
1: हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। समझौते के तहत होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान की परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को

0: करने का कोई अवसर नहीं दिया। कार्बो काडो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दाम्बुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार श्रोता लोकन, आजुक नमस्कार मिथिला कांक में हम रंजीत और हमारे संग उपस्थित प्रतिभा अहूँ का नमस्कार।
1: नमस्कार रंजीत जी, साथ ही समस्त श्रोताओं को प्रतिभा प्रीति का स्नेह भरा नमस्कार।
0: और जना कि श्रोता लोकन के बुझल छन कि कार्यक्रमक शुरुआत करै छी सुविचार सँ, तो सबसँ पहले आजुक सुविचार।
1: सुभाषितानी है, कहते हैं, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थित काष्ठ गतो ही वहनी, स एव वहनी दहते शरीरम। अर्थात क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा और मुख्य शत्रु है, जो उसके अपने ही शरीर में रहकर उसका विनाश करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूखी लकड़ी के अंदर छिपी हुई आग अंततः उसी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है।
0: निश्चित तौर पर देखो, जो अगर हम बात करें सामाजिक न्याय और सशक्त तौर पर देखें तो क्रोध के मनुष्य के दुश्मन मानो गए, लेकिन हमारे अंदर रह कर वो हमारे जो है से निराश कर या हमारे हाथ करवा के प्रयास करिए, अतिरिक्त क्रोध से हमरा लोकन के बचबाक चाहिए। लेकिन आजुक जो वर्तमान परिस्थिति जा रहल है ताहि में बुझू जे मानव जीवन के क्रोध एकटा अंग भ गेल छन, ओ हम नहीं कह रहल छी, समाज में देखा रहल है, ताहि हम ही बाजि रहल छी। नजर राखै छी आजुक दिनक इतिहास पर, जे आजुक दिन की खास महत्व रखते छै हमरा राष्ट्र में हमरा समाज में, जानकारी साझा कर रहल छथि प्रतिभा प्रीति।
1: आज ही के दिन अर्थात 16 जून 1963 को वेलेंटिना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में गई। ये दुनिया की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष यात्री बनी थी। 26 वर्ष की उम्र में ये 3 दिन तक अंतरिक्ष में रही थी। 16 जून 1606 में सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने मुगल शासक जहांगीर के आदेश पर अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए लाहौर में शहीद होकर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। 16 जून 1920 की बात करें तो प्रसिद्ध पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का जन्म हुआ था। हर साल 16 जून यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन प्रवासी श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए विदेशों में रहकर वहां से घर पैसे भेजते हैं,
0: जिनका अप्रवासी कहा जाता
1: है। बिल्कुल, जो कि बाहर जाते हैं, देश विदेश जाते हैं और वहां काम करके अपने घर पे जिन पैसों से उनके परिवार में बड़े बड़े काम जैसे बेटी की शादी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, या घर बनाना हो, जमीन खरीदना हो, यानी विकास का काम होता है, तो इसलिए उन्हें घर छोड़ के बाहर जाना होता है और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: सफलता पाबक के लिए कतेक जरूरी है, यानी कि कोनो कार्य के अगर हम शुरुआत करे छी तो तखन तक ओकमे हमरा ब्रेक नहीं लेबाक चाहिए, काज में रोक नहीं लगाबक चाहिए, जखन तक कि जाहि फलीभूत के प्रति राखि के हम कार्य के शुरुआत केने चलू अपना मंजिल तक।
1: देखिए ना, अभी हम बात किए हैं कि पारिवारिक प्रेषण दिवस, तो

तो वो बाहर जाते हैं, कामकाज करते हैं, घर पैसे भेजने के लिए. उद्देश्य यही होता है कि अधिक धन कमा के भेजना, लेकिन जाके फिर तुरंत आ जाएंगे तो इस तरह से फिर भी उनका जो उद्देश्य होता है वो उसकी पूर्ति नहीं होगी. इसमें निरंतरता बहुत ही आवश्यक है. निरंतरता की बात हम करते हैं तो चाहे छात्र हों या श्रमिक.

0: फिर ओ बैस जाए छे तर हुनका दिमाग में बहुत तरह के ताना बाना बुनाय लगे छे जे आब हम असफल भ गेलहुँ, हमरा समाज की कहत, हमरा परिवार की कहत, आगा हम की करब, हमर भविष्य अंधकार में जा रहल अछि। तऽ एहि सब सोचि कऽ थोड़ेक आर ओ हतोत्साहित भऽ जाइ छथि, अपना आपके थोड़ेक और ओ असमर्थता महसूस करऽ लगै छथि। लेकिन हम श्रोता लोकनिके कहियनि जे अपना धूरी से अपना गति से चलत चल जा रहल छे, तनाहिते हमरो अपन कर्तव्य के पालन करबाक लेल अपना धूरी से अपना गति से आगा बढ़बाक रहबाक चाही। बेसी अई चीज के मंथन
1: करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान कहते हैं, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अर्थात कि जो अभ्यास निरंतर जो अभ्यास होते रहे तो उससे जो कितनी भी कठिन काम है कार्य है उसे हम कर पाते हैं। बस उसमें चाहिए कि हर दिन हम उस काम को करते रहें, उसमें
0: अथक प्रयास करबाक चाही। दोसर बात ई छिए जे प्रयास तऽ हम अपन करै छिए, लेकिन जखन प्रयास करबाक दौर रहै छै ओहि काल में हमर शरीर रहै छै प्रयास में लागल, मुदा दिमाग घूमैत रहै छै पूरा मिथिला क्षेत्र।
1: तो वो मन से नहीं हुआ ना, वो प्रयास मानसिक तौर पे नहीं हुआ। जब आप कहीं भी अपना 100% देते हैं तो उसमें आपको भी सफलता 100% मिलती है। देखिए ना, एक बड़ा सा कोई आप उदाहरण ले लीजिए रामचरितमानस को ही पढ़ने का, देखने से लगता है कि पोथी बहुत मोटी सी है, बहुत जो देखने में कि इसको कैसे पढ़ पाएंगे, लेकिन आप एक ही पन्ना रोज यदि पढ़ते हैं, दो चार श्लोक ही उसका, एक दिन ऐसा होता है कि आप उसको खत्म कर पाते हैं पढ़ते हुए, समझ पाते हैं। इसी तरह हाँ
0: निश्चित तौर पर देखो ना, मान लीजिए
1: सीख सकते हैं कि वो थोड़े थोड़े से काम करते हुए एक दिन उन्होंने इतना लंबा रास्ता बना दिया, पहाड़ को तोड़कर। बिल्कुल,
0: उनकर कार्य की जो
1: निरंतरता से ही उन्होंने इतना कठिन कार्य को कर पाया।
0: ये उदाहरण हमारा समाज में ज्वलंत उदाहरण है। और आजुक जो हमारे युवा पीढ़ी है जो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चल जा रहा है, कारण जे रहल हो, आजुक शिक्षा पद्धति हो, पारिवारिक बात हो, उन्मुक्तता छे, उन्मुक्तता हमरा अंदर जरबाक चाहिए, ज्वलनशील रहबाक चाहिए, तखने हमरा लोकन अपन मंजिल के तरफ बढ़ सके। और फिलहाल नमस्कार मिथिला के अंक में, आजुक अंक में श्रोता लोकन बातचीत करब, तब श्रोता लोकन अखन सुनै छी सुंदर सन

0: और बाबूजी के कहना बा,
1: बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो

0: कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: विराम से पहले हम लोग सुन रहे थे मैथिली गीत, और अब जानते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को, जिसे हालचाल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: संजीत कुमार झा, ये सुनते हैं इनसे हालचाल।
1: धन्यवाद प्रतिभा, नमस्कार। ग्यारहगो डिग्री महाविद्यालय में पहल जुलाई सँ शुरू भऽ रहल शैक्षणिक सत्र में मैथिली और उर्दू विषय के पढ़ाई कराओल जायत। राज्यपाल सैयद अता हसनैन के विभिन्न प्रखंड के नवसर्जित 211 सरकारी डिग्री महाविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र में मैथिली और उर्दू विषय के पढ़ाई प्रारंभ करबाक निर्देश सोमवार को दिल गेल। बताबे चली कि अई महाविद्यालय में पहल जुलाई से प्रारंभ होवे वाला शैक्षणिक सत्र में फिलहाल 6 विषय के पढ़ाई शुरू करबाक निर्णय लेल गेल है, जाहि में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय के शामिल कयल गेल है। सब विषय कला संकाय से जुड़ल अछि। शहर के कर्पूरी चौक से दोनार चौक तक सब वाहन के लेल वन वे व्यवस्था लागू है। जिला अधिकारी कौशल कुमार के संबंधित अधिकारी ई निर्देश दिलन है। जिला अधिकारी सोम को अपन कार्यालय कक्ष में शहर के ट्रैफिक एवं यातायात व्यवस्था के आधुनिक और अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाव के लक समीक्षात्मक बैसार कैलन। बैसार में नगर क्षेत्र में बढ़त यातायात दबाव और सड़क अतिक्रमण और आपातकालीन सेवा के निर्बाध संचालन पर विस्तृत रूप से समीक्षा कैल गेल। जिला अधिकारी कहलन कि पूरी चौक से दोनार तक वनवे व्यवस्था लागू करबा के उद्देश्य सड़क जाम के कम केनाई है और आवागमन के अधिक सुचारू बनेनाई है। वो स्पष्ट निर्देश देलन है कि एम्बुलेंस सेवा पूर्ववत संचालित रहत तथा कोनो परिस्थिति में आपातकालीन चिकित्सा सेवा के बाधा उत्पन्न नहीं हुए। जिला अधिकारी लहरियासराय टावर से लोहिया चौक तक के दोनों सड़क के ओर से लागल ठेला, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता और अन्य अस्थायी अतिक्रमण हटाबे के संबंधित पदाधिकारी के आवश्यक कार्रवाई करवा के निर्देश से हो देलन है। जाले के स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन के ओर से फैलेरिया जांच के लिए सोमवार को नगर परिषद जाले के शंकर चौक सहित 5 स्थान पर सरकारी सहायता से शिविर लगाओल गेल। शंकर चौक स्थित शिविर के उद्घाटन मेडिकल अफसर डॉक्टर इरशाद आलम, स्वास्थ्य प्रबंधक लोकेश कुमार, जिला प्रतिनिधि चंद्रशेखर कर्ण और वंदना राय कैलन। ओते प्रभारी डॉक्टर विवेकानंद झा बतौलन कि फाइलेरिया रोगी के पहचान क ब्लड सैंपल लेल गेल और ये अभियान 1 तक चलत। एकर उद्देश्य फाइलेरिया के संगे पहचान ओकर उपचार करेनाई है और समाज से फाइलेरिया के उन्मूलन के समाप्त केनाई है। प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में सोमवार को प्रमंडल सभागार में DMCH रोगी कल्याण समिति के समीक्षात्मक बैसार कैल गेल, जाहि में स्वास्थ्य सेवा के गुणवत्ता, अस्पताल प्रबंधन, आधारभूत संरचना, चिकित्सा संसाधन और उपलब्धता तथा रोगी के बेहतर उपचार उपलब्ध कराब के संबंध में विस्तृत समीक्षा कैल गेल। आयुक्त दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक सँ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के वर्तमान स्थिति और संचालन के व्यवस्था के संबंध में फीडबैक सेहो लेलन। DMCH के अधीक्षक बतौलन कि अस्पताल में कुल 8 विभाग में संचालन के लक्ष्य है, जाहि में वर्तमान में 6 विभाग काज कर रहल है। आयुक्त स्पष्ट निर्देश दलन है कि रोगी के इलाज में दवा वितरण, चिकित्सीय सुविधा आदि लापरवाही करय वाला डॉक्टर और कर्मी पर सख्त कानूनी कार्रवाई सेहो कयल जायत। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में 1-30 जून तक संचालित राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के ओर से सोमवार का रानीपुर पंचायत भवन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। एहि अवसर पर राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार बतौलन कि स्वस्थ माटि और निर्मल जल राष्ट्रीय समृद्धि और लोक स्वास्थ्य के आधार है। माटि केवल कृषि उत्पादन के माध्यम नहीं, जखन कि खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और भावी पीढ़ी के जीवन के आधारशिला सेहो रखैत है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के इंडोर बेड साइड सैंपल के कलेक्शन के लिए वाइल के इंतजाम नहीं भव कला के कारण मरीज के परेशानी बढ़ रहा छ। एकरा लक पैथोलॉजी कर्मी सेहो काफी परेशानी में छथि। सैंपल कलेक्शन के लिए परिजन के वाइल लाबो से इमरजेंसी विभाग के पैथोलॉजी यूनिट में भेज देल जाय छै, जकरा कारण इमहर उमहर परिजन के भटकय पड़ै छै। जिला अधिकारी कौशल कुमार बतौलन कि जून महीना में तृतीय यानी कि तेसर मंगलवार 16 जून को जिला के 36 पंचायत और 10 नगर निगम क्षेत्र में वार्ड वार सहयोग शिविर आयोजन कयल जाय। एकरा लेल प्रशासनिक स्तर पर सब तैयारी पूरा क लेल गेल। सदर प्रखंड के अंतर्गत सोनकी और धोई पंचायत में दरभंगा नगर निगम वार्ड के 2 और 47 में अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत

निवारण पदाधिकारी राजेश गुप्ता के अध्यक्षता में सहयोग शिविर लगाए जाए। बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत सिमरा नेहालपुर मनियारी पंचायत में बड़ी उप समाहर्ता पवन कुमार यादव के अध्यक्षता में शिविर लगाया जाए। हायाघाट प्रखंड के अंतर्गत मझोलिया और श्रीरामपुर तथा नगर पंचायत हायाघाट के वार्ड नंबर 8 में अपर समाहर्ता विभागीय जाँच राकेश कुमार के अध्यक्षता में शिविर लगाया जाए। ओतहि हनुमान नगर प्रखंड के अंतर्गत डिलाही थलवारा पंचायत बहेरी प्रखंड के अंतर्गत समदपुरा और नगर पंचायत बहेरी वार्ड नंबर 14 केवटी के अंतर्गत असराहा और कोठिया जाले प्रखंड के अंतर्गत राढ़ी पश्चिमी और देवघोड़ा नगर परिषद जाले वार्ड के 3 में नगर पंचायत कमतौल के अहियारी वार्ड 11 सिंहवारा प्रखंड के अंतर्गत शहनाजपुर बुजुर्ग एवं राजे नगर पंचायत भरवारा एनाहते कक सब तरह सहयोग शिविर लगाओल जाए। पूर्वी भारत के क्षेत्रीय हवाई अड्डा में दरभंगा एयरपोर्ट सबसों तेजी से विकसित होवे वाला एयरपोर्ट भ गेल है। दरभंगा हवाई अड्डा दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलुरु और हैदराबाद जैसन देश के प्रमुख शहर के संगे बेहतर हवाई संपर्क प्रदान कर रहल है। ई बात सोमवार का दरभंगा एयरपोर्ट पर आयोजित यात्री सुविधा दिवस 2026 के बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन

0: हनुमान नगर प्रखंड के अंतर्गत डिलाही थलवारा पंचायत बहेरी प्रखंड के अंतर्गत समदपुरा और नगर पंचायत बहेरी वार्ड नंबर 14 क्योटी के अंतर्गत असराहा और कोठिया जाले प्रखंड के अंतर्गत राढ़ी पश्चिमी और देवघोड़ा नगर परिषद जाले वार्ड के तिरमे नगर पंचायत कमतौल के अहियारी वार्ड 11 सिंहवारा प्रखंड के अंतर्गत शहनाजपुर बुजुर्ग एवं राजे नगर पंचायत भरवारा एनाहिते कक सब तरह सहयोग शिविर लगाओल जाए। पूर्वी भारत के क्षेत्रीय हवाई अड्डा में दरभंगा एयरपोर्ट सबसे तेजी से विकसित होने वाला एयरपोर्ट भ गए। दरभंगा हवाई अड्डा दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलुरु और हैदराबाद जैसन देश के प्रमुख शहर के संगे बेहतर हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है। इस बात सोमवार का दरभंगा एयरपोर्ट पर आयोजित यात्री सुविधा दिवस 2026 के बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन करें स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर कहल है। इ हाल चाल अखन अपने लोकन आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहा।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
5: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: मिथिला के प्रसिद्ध पौराणिक महत्व के धर्मस्थल गौतम कुंड महर्षि गौतम आश्रम में सोमवार को सनातन परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के अमावस्या सोमवती अमावस्या के रूप में मनाओल गेल। आय के दिन पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन से हो छल। एहि मौका पर कुंड में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालु सँ गौतम कुंड के बीच भरल रहल। बिरौल प्रखंड के अंतर्गत पंचायत आम निर्वाचन 2026 के लिए आरक्षण निर्धारण के लक पपत्र 1 के अंतिम प्रकाशन सोमवार 15 जून को 100 विनिष्ट स्थल पर कह दिल गया। निर्वाची पदाधिकारी से वीडियो प्रदीप कुमार झा बतौलन कि वर्ष 2011 के जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम पंचायत के सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण तय कर अंतिम सूची प्रकाशित कह दिल गया। वो कहलन की अंतिम सूची प्रकाशन के सूची प्रखंड कार्यालय भवन, सौ पंचायत कार्यालय भवन और सार्वजनिक जगह पर छिपका दे गेल। बेनीपुर व्यवहार न्यायालय के बेनीपुर परिसर में सोम को वरिष्ठ जन अधिकारी सशक्तिकरण और गरिमा विषय पर एगो जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित कैल गेल। कार्यक्रम के आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालासा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में कैल गेल, जाहि में वरिष्ठ नागरिक के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देल गेल। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम रोशन कुमार छपोलिया कहलन कि बुजुर्ग हमरा समाज के धरोहर छथि और हमर मार्गदर्शक छथि, हिनका मार्गदर्शन में राष्ट्र, देश और आगा बढ़ सकैत अछि। समस्तीपुर जिला के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षक और कार्यरत शिक्षक के वेतन भुगतान मद में समस्तीपुर जिला के कुल 18,46,27,748 रुपया पठाओल गेल। विभाग के डीओई निर्देश देलन है कि अई राशि के विचलन होम और वेतन भुगतान करबाक ओकर व्यक्तिगत जिम्मेदारी अछि। डीपीओ स्थापना के राशि के निकासी करबाक लेल और भुगतान के प्रक्रिया शुरू करबाक जिम्मेदारी देल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बीए रेगुलर विभाग में एनएसएसएस इकाई के स्वास्थ्य केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर सोम दिन बीए विभाग में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के आयोजन कयल गेल। शिविर में 22 व्यक्ति रक्तदान कयलनि। सब रक्तदाता के डीएमसीएच के ओर से रक्तदाता प्रमाण पत्र सेहो देल गेल। एहि के संगे आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: जय हिंद। पिछले 1 दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया।

0: डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हालचाल के बाद एक बार फिर श्रोता लोगों ने अपने का स्वागत है अपने के पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। हम रंजीत और हमारे संग छथि प्रतिभा, और आजुक नमस्कार मिथिला के अंक में हमारे लोगों के आप समय भर रहे प्रतिभा जे श्रोता लोगों से जो है से मौसम संबंधी जानकारी हमारे लोगों के साझा करी।
3: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 13 से 17 जून 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में मानसून का प्रवेश हो गया है। इसके प्रभाव से पूर्वानुमान अवधि में अधिकांश समय आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। 13 से 15 जून के बीच मेघ गर्जन, वज्रपात एवं तेज झोंकेदार हवाओं के साथ उत्तर बिहार के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना थी। एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती थी। कमजोर सिस्टम के कारण इस क्षेत्र में अच्छी वर्षा होने की संभावना नहीं है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि बेगूसराय तथा सारण जिलों में एवं वहाँ पे 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं यदि सुबह में सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो 75 से 80% तथा दोपहर में सापेक्षिक आर्द्रता 30 से 35% रहने का अनुमान है। हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा से 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की संभावना है। बात करें यदि लोकल अपडेट की कि मेडिसिन ओपीडी में डीएमसीएच के मेडिसिन ओपीडी में जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी रहेगी तो आज के दिन यानी मंगलवार को डॉक्टर वी एन झा, डॉक्टर यू के सहनी, डॉक्टर सुरुचि, डॉक्टर शुभम की ड्यूटी रहेगी। वहीं न्यूरो ओपीडी में डॉक्टर स्नेह कुमार झा उपस्थित रहेंगे।
2: जो हम अपने बात करी यातायात संबंधी के जानकारी भी अस्पताल के बताबे चली जो हाल चाल में अपने लोगों के अखने हम बतेलूँ हैं जे शहर में वनवे के
3: है या जो भी स्कूल ऑफिस में काम कर रहे हैं वो घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे कहीं जाने का, और वहाँ का मौसम ही खराब हो गया है तो पर्यटन भी इससे बाधित होता है। तो इस सब से जो है रोजगार भी प्रभावित होते हैं, जिसका सीधा असर हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बाढ़ की बात करते हैं, चक्रवात की बात करते हैं, भारी वर्षा की बात करते हैं, सड़कें, पुल या रेलवे या अनेकों अन्य बुनियादी ढांचे हैं जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इनको फिर से निर्माण
2: कराना,
3: तो सरकारी जो धन है उसकी ही क्षति होती है इसमें। तो इस सबसे हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और वहीं यदि बात करते हैं जलवायु परिवर्तन से अर्थव्यवस्था पर कैसे व्यापक प्रभाव पड़ता है, तो समय रहते यदि कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया रंजीत जी तो निश्चित तौर पर देश में आर्थिक विकास की गति बाधित हो सकती है। इसके लिए बस एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है, उपाय क्या करना है कि सरकार और नागरिक दोनों को मिलकर पर्यावरण संरक्षण, जो हम सभी हर समय बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण, इस पे बहुत ही अधिक ध्यान देना होगा। सतत विकास की दिशा में प्रयास करने होंगे। इसके लिए पहला है नवीकरणीय ऊर्जा, अर्थात सौर एवं पवन ऊर्जा से जो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको बढ़ावा देना और इसके महत्व को समझना। दूसरा है जल संरक्षण और वर्षा के जल को संचयन करना, जो वर्षा का जल होता है उसे हम कैसे संचयन करें, संचित करें, इसके लिए प्रोत्साहित करना, जल की बर्बादी होने से रोकना। तीसरा है कृषि कार्य के लिए जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों का उपयोग करना होगा हम सभी को, तभी हम इसमें थोड़ा सा बच सकते हैं। इसे आपदा प्रबंधन व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। और सबसे बड़ी बात रंजीत जी कि वृक्षारोपण पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा और वन संरक्षण को बढ़ावा देना होगा। वनों की कटाई पर रोक लगाकर और नए पेड़ लगाने होंगे। व्यक्तियों को ध्यान देना होगा कि यदि हम वृक्ष नहीं लगाएंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे तो आज क्या भुगत रहे हैं आने वाले दिन में, इससे भी कहते हैं कि बद से बदतर स्थिति को हम सभी खुद ही आमंत्रण दे रहे हैं। इसके लिए हम सभी को ही जागरूक होना होगा। कम से कम जहाँ से पेड़ की कटाई कर लिए हैं वहाँ तो पेड़ निश्चित रूप से, पौधारोपण निश्चित रूप से कर लेनी होगी। और ये बात सिर्फ कहने के लिए, बोलने के लिए और सुनने के लिए नहीं है, बहुत ही आवश्यक है इन बातों पे।

0: अमल करना और आगे बढ़ना, कदम बढ़ाना, और पेड़ लगा लिए छोड़ दिए ऐसा नहीं है, आज लगा के फोटो खींचा के मैं सोशल मीडिया पे डाल के छोड़ दिए हैं और कल से उस पेड़ का पौधा का क्या हुआ, उसको निरंतरता, हमने कहा कि निरंतरता सफलता की कुंजी है, तो निरंतर उसकी देखभाल यदि करते हैं तो वही एक छोटा सा पौधा कल होके बड़ा सा वृक्ष बनेगा, जो हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में कहीं ना कहीं हमारी मदद जरूर करता है।
1: देखो एकटा बात हम लोगों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, जो उपभोग और उपयोग में अंतर छ, तो हमरा उपयोग करवा के उपभोग नहीं करवा के, उपभोग में जखन हम चल जाए तो इस सब चीज के सामना हमारे लोगन के करो पड़त और आवे वाला भविष्य के सेहो करो पड़ते। बहरहाल और एक डग आगा बढ़ी आज नमस्कार मिथिलांक में और चले चले सुनी छे ये सुंदर सन फिल्म संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज के इस अंक से लेंगे विदा। तो प्रतिभा प्रीति को
1: संग रंजीत के दिल जो आज्ञा नमस्कार मिथिला।

0: कार्यक्रम नमस्कार मिथिला अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
4: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
5: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।

0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:00।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार प्रभात सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
5: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
4: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन

में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जल मार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यार्स का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण

0: साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजेन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान

0: पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5,400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेटनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे, to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at U.S. Air Force Base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour.
3: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
2: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart, Robert Fico, in Bratislava.

0: सहयोग को नई गति मिलेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने भारत की तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम के दौरे ब्रातिस्लावा के दौरान कई तारीखी फैसले किए गए, जिनमें भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को नुमाया तौर पर मजबूत करने की सलाहियत मौजूद है। वजीर आजम जनाब मोदी के दौरे के दौरान कुल 11 अहम मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। इन मुआहदों में दिफा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, सियाहत, क्वांटम कम्युनिकेशन और मसनूई जहानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी और आला तालीम जैसे शोबों में तआवुन बढ़ने की तवक्को है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको के दरमियान बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने में तआवुन को मजबूत बनाने के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला किया है। वजीर आजम मोदी आज ब्रातिस्लावा से रवाना होंगे और G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस जाएंगे। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए।

gelassen.

0: नास हो जात ई बेटी के बड़ा दुख उठावे के पड़त। अहो धर्म युद्ध में हमर सोना सनमन अमर दीप भाई अभिमन्यु जकित मारल गेल, पापी सके साजिश में माय चल गेल, त न आई जर जमीन लेकर हम सब की करब। उ मरल आत्मा के शांति जमीन से तर न मिलत। बस तू वीर अर्जुन नाहित अपन धुन में चलत रह कर कुकर्मी सक परवार करत रह। जीत हमेशा धर्मे के हुईया, अपन पितर का लोर के नुकबैत अनुपमा एक सुर में श्री कृष्ण जी नाहित बोल गेल, मुदा घर में जाकर चोरी छुपे आँख से लोर बहावे लगल। जेठ के तपैत अलसाइत महीना जायला तैयार है, रोहिणी वगैरह नक्षत्र एकादगो खाली तनका तनका बूंद बरसा कर चल गेल, जना मंच पर कोनो जोकरवा तनका हंसा कर चल जाइए। मुदा अदरा चढ़ते इतना न मेघवा बरसे लगल कि मौसमो विभाग कह दिलक कि मानसून केरल में आ गेल। मानसून केरल में आबे चाहे उड़ीसा पश्चिम बंगाल में, हियाँ तो असगर अहगर से वर्षा बरस कर किसान सके मन में अदरा मनाइए दिलक। मकई के मुठ लगे लगल कि धार के बिरार गिरे लगल, आ घर घर में खीर पूरी खा खा कर लोग सके मन हर्षित हो लगल। अनुपमा अपन बाबू के दुखाल मन पर
1: मना उना का खिया का खुद कॉलेज चल गेल। इन्हें ओकर बाबू जान बनिहारा जोड़े चल गेलन चौर दिशा खेत में। चार पाँच घंटा खूब हुमेज का काम भेल आ मजूर सब अपन काम पूरा कर का अपना अपना घर चल गेल। मुदा प्रगास कहाँ जाओ, वो बेचारा अपन खेते में रह तनका बचल का खुदरिया काम से करे में लग गेल। अनुपमा कॉलेज से आयल न कि आदमी सके कर रह सुनकर ओकर मन उचट गेल। प्रकाश डूब गेल थीन, सब दौड़ल, अनुपमो चौर दिशा भागल आ हुआ पर के भीड़ भड़क्का के हटबैत घुस गेलक जन्ना बजाज कपड़ा के कैंची लगा कर चीर दैया। हटै जा हो चच्चा भैया, की भेलै ई तन्नी गो डबरी में बाबू केना डूब जथिन। आ तुरंत ऊ सम्हर गेल आ पुलिस के फोन कर दिलक। लोग सब मुहा मुही बतियाए एहो बेचारा के मरले मौगत लै, देह पर चोट के चेन्हा त सेहे कहै छै, बुझा है हाथ गोर तोड़ले है। पुलिस आयल आ लोग सब के सहयोग से लाश के निकाल कर पोस्टमार्टम लेल जिला ले गेल। आ इन्ने अनुपमा के लोर अदरा के झींसी नाहे चुवैते रहल, जाले ओकरा आत्मा कुटुम से एकर बाबू के लहास न ले आयलन। तब तक अनुपमा के जन्ना होशे आ गेल, झांसी के रानी नाहित घबैलो होकर उठ गेल आ सभ्य विध व्यवहार में खुद हाथ बटावे लगल। आ दुनिया देखे लगल कि बेटी होइयो क सबके जौरे मृत्यु के उठैले अंतिम क्रिया के लेल चल देलक बूंद बूंद लोर चुबैत। आ निज एकादशी के दिन पहलैते उ नर्सिंग होम के डॉक्टर के 10 वर्षा जेल हो गेल। आ अब अनुपमा फिनु कान रहल हाँ, बूंद बूंद लोर गिर रहल हाँ ओकरा आँख से, जे सभ्य मरल भाई बाप माय के याद में श्रद्धांजलि के फूल बन जाइया।
2: अखनी अपने ज्वाला प्रसाद सिंह के खिस्सा सुनित रही, शीर्षक रहे बूंद बूंद लोर।

अब बात अपन धरोहर की। आई हम बात करे थी भारत के उत्तरी प्रांत बिहार के राजगीर शहर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के, जेकरा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कैल गेल रहे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित प्राचीन केंद्र दुनिया के सबसे पुराण आवासीय विश्वविद्यालय में से एक है। एकर स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा कैल गेल रहे। ये शिक्षा आ संस्कृति के ऐतिहासिक केंद्र रहे, जेकरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के दर्जा प्राप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना के ई उद्देश्य रहे कि छात्र के वेद, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, चिकित्सा आ बौद्ध दर्शन जैसन तरह तरह के विषय में गहन ज्ञान के अवसर प्राप्त हो। एकर लक्ष्य एशिया के विभिन्न देश जेना चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान आ श्रीलंका जैसन देश के विद्वान आ भिक्षु के एगो मंच पर लाना रहे, जेकरा से संस्कृति आ ज्ञान के आदान प्रदान हो सके आ एगो ऐसन वातावरण के निर्माण हो जहाँ सैद्धांतिक आ व्यावहारिक दुनू तरह के शिक्षा दिल जा सके। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन परंपरा के पुनर्जीवित करे के लिए भारत सरकार आ पूर्वी एशिया के सदस्य देश के सहयोग से 2010 में बिहार के राजगीर में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना कैल गेल है। आ एकर उद्देश्य प्राचीन ज्ञान के आधुनिक संदर्भ में समझना आ वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सहयोग के बढ़ावा देना है। आज के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के नयका स्वरूप प्राचीन गौरव आ आधुनिक तकनीक के बेहतरीन मिश्रण मानल जाइए। राजगीर में स्थित ये नया परिसर 455 एकड़ में फैलल एगो विशाल, पर्यावरण अनुकूल आ विश्व के पहला नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। यहाँ मुख्य रूप से ग्लोबल PhD आ मास्टर्स माने MA, MSc, MBA जैसन उच्च स्तरीय शोध लोग के ध्यान अपना तरफ आकर्षित करित है आ विश्व भर के विदेशी छात्र आ प्राध्यापक के बहुत बड़ा भागीदारी के दिखावित है। यहाँ के वास्तुकला भी बड़ा ही भव्य है। ई लाल ईंट से निर्मित एगो विशाल आ भव्य परिसर रहे, जेकरा अभी भी देखल जा सकित है। देखू वैसे त नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में बहुते बात है, पर आई बात अपन धरोहर में बस इतनी। अब कार्यक्रम में समय हो रहल है शब्द सरिता के, त आओ जाने थती बज्जिका शब्द सरिता के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। आई शब्द सरिता में सबसे पहले आयल है एगो शब्द डिम्भी, जेकर मायने होइया अंकुर। जेना लोग कहत हतीन कि हम सब्जी के बीज बो देले हती, ओकरा अच्छा से पानी पटावे से डिम्भी निकल जायत, मतलब उ अंकुरित हो जायत, त पेड़ बढ़त आ सब्जी फड़े लगत, त डिम्भी के मायने भेल अंकुर। दीदा, एकर मायने भेल आँख या दृष्टि। जेना लोग कहत हतीन हमरा बिना चश्मा के कोनो चीज देखे में दिक्कत होइया, हमर दीदा यानी हमर आँख या दृष्टि कमजोर है, त दीदा के मायने भेल आँख या दृष्टि। टोन, एकर मायने होइया व्यंग। जेना लोग कहत हतीन कि उ आदमी के हर समय टोन मारे के यानी व्यंग करे के बड़ा खराब आदत है, त टोन के मायने भेल व्यंग करनाए। टेटुआ, एकर मायने भेल गला या गर्दन। जेना लोग कहत हतीन ज्यादा जोर से नहीं चिल्लाए के चाही, नहीं तो टेटुआ में मतलब गला में दर्द हो सकत है, त टेटुआ के मायने भेल गला या गर्दन। एनाहिते एगो और शब्द है महठेरनाई, एकर मायने भेल अनसुना करनाई। जेना लोग कहत हतीन उ इंसान के त ई आदत है कि उ हर बात के अनसुना कर देत है, मतलब महठेर देत है, त महठेर के मायने भेल अनसुना करनाई। शब्द सरिता के अंत में एगो शब्द आयल है सिहंता, जेकर मायने होइया अभिलाषा या इच्छा। जेना लोग कहत हतीन हमरो सिहंता लगैया, मतलब हमरो अभिलाषा होइया कि हमर बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, ऊंचा पद पाए, त सिहंता के मायने भेल अभिलाषा या इच्छा। त ई रहे शब्द सरिता के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने।

अखनी अपने सब सुनित रही शब्द सरिता। अब कार्यक्रम अपन समाप्ति पर है। तो बज्जी का कार्यक्रम अंगना अपने सबके कैसन लगैया, अपने अपन विचार अपन सुझाव के एगो चिट्ठी या हमर ईमेल आईडी के माध्यम से हमरा भेज सकत हती। हमर पता है बज्जी का कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। पिन कोड है 8460004। हमर ईमेल के पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो अब समय हो रहल है अपने से विदा लेवे के। अब बज्जी का कार्यक्रम अंगना से प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के संग हम विजेता सिन्हा एक बेर फिर से अपने सबके प्रणाम करे थती।

बज्जी का कार्यक्रम अंगना, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम सुनते हैं शोभा गुर्टू का गायन।

उप शास्त्रीय संगीत अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: बहुत सुंदर जानकारी थी। नवतपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
0: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
0: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती भी झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जला

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा।

0: पूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर लें, 8800-440-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी

0: और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ
2: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है, खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
3: मेरी तरफ देखो
4: सू, Only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: ओह जॉन्सी,
1: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
0: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ।

0: बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया, सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
1: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
0: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
2: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
1: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
0: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: टू, ओ, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
1: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
2: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
0: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
0: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है या नहीं। खोल सरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,

0: सू?
1: हाँ जॉन्सी।
0: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
1: हाँ बिल्कुल,
0: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
1: बिल्कुल जॉन्सी।
0: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
1: पत्ता?
0: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
1: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
0: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
1: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
3: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
0: बेहतर।
1: ये लो कॉफी पियो।
0: थैंक यू
1: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
0: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
1: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
0: ओ गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
4: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
1: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
0: मास्टरपीस, मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल से

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बने। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग अभी आपने सुना। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओं, दोपहर के 12 बज चुके हैं और ये समय होता है नए फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म जवान के इस गीत के साथ।

शिल्पा राव और अरिजीत सिंह को भी आप सुन रहे थे फिल्म जवान में। गीत की बोली के थे कुमार ने और संगीत निर्देशन अनिरुद्ध रविचंद्र का था। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी से।

अरुण देव का गाया हुआ ये गीत अभी आप सुन रहे हैं, जिसे लिखा है जूनो ने, संगीत निर्देशन अनुराग सैकिया का, और फिल्म के नाम है दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी।

श्रद्धा मिश्रा, सुवर्णा तिवारी और यश मिश्रा को भी आप सुन रहे थे फिल्म जाइए आप कहाँ जाएंगे में। गीत के बोल पारंपरिक थे और संगीत निर्देशन संदेश शांडिल का था। लीजिए अब सुनिए फिल्म आंख मिचोली का ये गीत, सचिन जिगर, जोनिता गांधी और शाश्वत सिंह की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं प्रिया सरैया ने और संगीत निर्देशन सचिन जिगर की जोड़ी का।

बेनी दयाल और हानिया नफीसा को सुनिए फिल्म कनेक्ट में। गीत के बोल लिखे हैं आकांक्षा सेठी ने और संगीत निर्देशन पृथ्वी चंद्रशेखर का।

नक्स अजीज और हरजोत कौर की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीर एक्सप्रेस का ये गीत, जिसे लिखा है श्लोक लाल ने और संगीत निर्देशन तनिष्क बागची का।

सुनिधि चौहान और शाश्वत सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे हैं ये गीत, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और इस गीत की धुन तैयार की है प्रीतम ने। फिल्म का नाम है तू झूठी मैं मक्कार।

यह है इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आवाज श्रेया घोषाल की है, गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने, संगीत निर्देशन पायल देव और आदित्य देव का है। फिल्म का नाम है दे दे प्यार दे टू।

ये है इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आवाज श्रेया घोषाल की है, गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने, संगीत निर्देशन पायल देव और आदित्य देव का है। फिल्म का नाम है दे दे प्यार दे टू।

0: श्रेया घोषाल के गाए इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है रविवार 14 जून 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी का संपादित अंश।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
2: श्रोताओ नमस्कार, संजय की तरफ से। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर की मात्रा में बहने वाला रक्त हमारे जीवन का आधार है। बीमारी, ऑपरेशन या दुर्घटना में हुए रक्तस्राव की स्थिति में शरीर में खून की कमी हो जाए तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। इस आवश्यकता की पूर्ति शरीर तत्काल नहीं कर पाता और इससे होने वाली संभावित मृत्यु को टालने के लिए आपात स्थिति में दूसरे व्यक्ति के खून की ज़रूरत पड़ जाती है। सवाल यह है कि क्या हमें इस रक्तदान के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसकी तकनीक और सावधानियों के बारे में, साथ ही रक्तदान से जुड़ी तमाम
1: कभी ये रुलाए।
2: श्रोताओं नमस्कार, संजय की तरफ से। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर की मात्रा में बहने वाला रक्त हमारे जीवन का आधार है। बीमारी, ऑपरेशन या दुर्घटना में हुए रक्तस्राव की स्थिति में शरीर में खून की कमी हो जाए तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। इस आवश्यकता की पूर्ति शरीर तत्काल नहीं कर पाता और इससे होने वाली संभावित मृत्यु को टालने के लिए आपात स्थिति में दूसरे व्यक्ति के खून की ज़रूरत पड़ जाती है। सवाल यह है कि क्या हमें इस रक्तदान के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसकी तकनीक और सावधानियों के बारे में, साथ ही रक्तदान से जुड़ी तमाम भ्रांतियों और इसके निवारण के बारे में कितनी जानकारी है। जिंदगी की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी ज़रूरी जानकारी को आप तक पहुंचाने का हमारा भी एक प्रयास है ये कार्यक्रम, जिसका नाम है हेलो जिंदगी। रक्तदान क्यों है महादान, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए, आप श्रोताओं को जरूरी जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज

0: कॉलेज एवं अस्पताल के रीजनल ब्लड बैंक यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव कुमार जी, एक बार फिर से आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में और कार्यक्रम हेलो जिंदगी में आपका स्वागत। नमस्कार, कैसे हैं सर?
1: ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।
0: बहुत सारी बातें होंगी रक्तदान को लेकर, लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, सवाल आएंगे भी, और उन भ्रांतियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जिन भ्रांतियों को लेकर लोग हिचकिचाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, जीवन रक्षा के लिए डोनेशन नहीं देते हैं ब्लड का, उन सारी बातों पर चर्चा होगी। लेकिन एक श्रोता जुड़ गए हैं, डॉक्टर साहब पहले उनसे बात कर लें। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: पासवान गांव बसतपुर से बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ मोहन पासवान जी, बताइए क्या जिज्ञासा है आज?
2: जी सर, जिज्ञासा है कि जो दान देते हैं उनको खून से लोग बढ़ते हैं और उनके खरीद खून शरीर से

0: उनका बिहार में या देश इंडिया में दिया गया 18 साल से लेकर 60 साल के आयु वाले रक्तदान कर सकते हैं। जो रेगुलर डोनेट करते रहते हैं वो 65 साल तक रक्तदान कर सकते हैं।
1: डायबिटीज है?
0: डायबिटीज अगर है किन्हीं को, अगर वो दवा खा रहे हैं नॉर्मल हैं उनका रहता है डायबिटीज, तो वो रक्तदान कर सकते हैं।
1: कितना गैप होना चाहिए ड्यूरेशन?
0: एक अगर कोई मेल मेंबर अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो पुरुष के लिए 90 दिन के बाद दोबारा डोनेट रक्तदान कर सकते हैं, और महिला है तो 4 महीने के बाद, यानी कि महिला साल में 3 बार और पुरुष साल में 4 बार रक्तदान कर सकते हैं।
2: आते हैं मोहन पासवान जी के उस सवाल पर। उनका कहना है कि रक्तदान से पहले किस किस तरह की सावधानी होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है ये पहले बता दीजिए डॉक्टर साहब।
0: जनरली देखा गया है कि हमारे इंडिया में खासकर महिलाओं में बच्चों में खून की कमी पाई जाती है
2: जी।
0: सौ समय मतलब नियमित आहार नहीं लेना, समय से खाना नहीं खाना, अपने स्वास्थ्य प्रति जागरूक नहीं है लोग, इस कारण से उनको होता है, खून कमी होती है। और दूसरा मैंने कहा कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, रक्त के लिए रक्त ही
2: चाहिए।
0: कभी गर्भवती महिलाएं आती हैं जो है बहुत ही रक्तस्राव हो रहा है, कभी किन्हीं को गोली लगा हुआ है तो उनको ब्लड बहुत रक्त जा रहा है,
2: किसी दुर्घटना में
0: कोई एक्सीडेंटल आ जाते हैं, कोई ट्रेन के पैर कट गया था उनका बहुत ज़्यादा रक्त जा रहा था, कोई है नहीं साथ में, तो उस टाइम पे रक्त ही उसका एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो रक्त देने से किसी भी तरह कोई दिक्कतें नहीं होती, नियमित रूप पे रक्त जो स्वस्थ मन पर जो स्वस्थ व्यक्ति हैं जिनका हमने कहा था 3-4 बातों ध्यान रखना है, कौन कर सकते हैं? पहले तो एज है
2: जी,
0: एज में 18 जो नियमित करेंगे सो 18 साल से लेकर 60 वर्ष तक,
2: सही,
0: जो परिवार करेंगे, जो नियमित करते रहते हैं उन्हें 65 साल तक वो कर सकते हैं। कितने अंतराल पे कर सकते हैं? पुरुष जो हैं वो 90 दिन पे और महिला जो है सो 120 दिन पे, यानी 3 महीने और 4 महीने का रहता है, पुरुष 3 महीने और महिला है 4 महीने का।
2: ठीक।
0: उसका वेट वजन जो है वो एक्यूट इमरजेंसी के लिए हम रखा गाइडलाइन दिया गया 45 किलो, लेकिन हम लोग 50 लेके चलते हैं कि 50 किलो तक जो वजन रहना चाहिए, ये सब क्राइटेरिया है। अब किन्हीं को है कि मतलब जैसे इससे पहले हमसे पूछा गया था जो वैद्य जी थे सुनील जी डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक का भी है जो हमने कहा कि जो अगर दवा खा रहे हैं रेगुलर अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनका डायबिटिक जो है सो नॉर्मल रेंज में रहता है दवा खाने का, तो रक्तदान कर सकते हैं। जो इंसुलिन पे हैं वो नहीं दे सकते हैं।
2: अच्छा।
0: जिनका बीपी बढ़ा हुआ है तो वो रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा रहेगा किसी को 220 हो 120 आ गया तो बहुत ज़्यादा हो गया वो नहीं करेंगे, जिनका लो बीपी है वो
2: नहीं करेंगे,
0: रक्तदान नहीं करेंगे।
1: नमस्कार, संजय रहे हूँ
2: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं दिनेश मिश्रा सरसा पाई से बोल रहा हूँ सर।
2: जी दिनेश मिश्रा जी, बताइए क्या जिज्ञासा है?
1: जिज्ञासा है मेरा,
2: जरूर बताइए।
1: खून का रंग तो लाल ही होता है अमूमन, लेकिन सफेद कण और लाल रक्त कण ये हो जाता है, ये दोनों क्या चीज है? लाल रक्त कण और सफेद रक्त कण खून। और दूसरा सवाल है कि लोगों में जागरूकता भी आ रही है, लोग जगह जगह रक्तदान भी कर रहे हैं
2: जी,
1: लेकिन जब हॉस्पिटल की बात आती है तो कोई मरीज जब भर्ती रहता है और उसे खून की आवश्यकता होती है तो फिर अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता है
2: जी,
1: तो उसमें लोगों का मन जो है तो टूट जाता है, इसके लिए मतलब डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
2: खून की जरूरत है तो वहाँ पर आपने एक शब्द का इस्तेमाल आपने किया है कि वहाँ भागदौड़ करनी पड़ती है। ये प्रक्रिया क्या है अस्पताल के लिए वो डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे आपको। सुनिएगा, आप रेडियो पर सुनिएगा, क्योंकि एक और श्रोता हमारे दूसरे फोन लाइन पर है, उनसे भी बात कर लेते हैं, सारी बातों को हम क्रम से एक एक करके लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और श्रोता जुड़ गए, उनसे भी जुड़ जाए जी। नमस्कार,
3: महाकांत सिंह बोल रहा हूँ सर, हनुमानगढ़ राजस्थान।
2: हनुमानगढ़ जी जी।
3: बस एक जानकारी पूछ रहा हूँ सर, कितने साल तक शुगर का मरीज रक्तदान कर सकता है?
0: जांच पे है कि मतलब अगर नॉर्मल रेंज में है तो कर सकते हैं। एक होता है कि जो स्वस्थ आदमी है हर 3 महीने चल करते रहते हैं, इनका एक करते रहते हैं खान पान सही रखते हैं तो शुगर में भी कमी आ सकती है। ब्लड देने से जिनका बीपी है, डायबिटीज, थायराइड, ये सब में कमियां बहुत कमियां देखी गई है, तो रक्तदान करने से फायदे हैं।
2: सही बात है। एक और श्रोता जुड़ गए जी। नमस्कार।
4: हाँ
2: जी,
4: मैं कुमार लाल दास
2: जी
4: से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है
1: रक्त जो होते हैं उससे कुछ

0: ग्रुप होते हैं वो कितने तरह के ग्रुप होते हैं,
1: चलिए बढ़िया सवाल है। अरुण कुमार लाल दास जी नमस्कार आपको, और डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि कितने ग्रुप होते हैं। वहाँ हम जा ही रहे थे, उन्होंने कहा था कि शाकाहारी और मांसाहारी जो भी खाना खाते हैं सब समान ही खाते हैं, लेकिन ग्रुप अलग अलग है।
2: ऑलरेडी बना हुआ कि एक माता हर एक, आपने पहले ही शुरुआत जब हुआ कार्यक्रम तो आपने पहले कर दिया था कि इसके जो जनक हैं कार्ल लिस्टनर, उनके 1901 में उन्होंने चार तरह का ग्रुप खोज किया, ओ ए बी और ए बी, ये चार तरह के ग्रुप पाया जाता है। उसी में आर एस फैक्टर होता है, जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो किन्हीं का ओ पॉजिटिव होता है, किन्हीं का ओ नेगेटिव होता है, किन्हीं का ए पॉजिटिव होता है, किन्हीं का ए नेगेटिव होता है, किन्हीं का बी पॉजिटिव होता है, किन्हीं का बी नेगेटिव होता है, किन्हीं का ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव होता है।
1: सही।
2: पहले होता था क्या, ओ ग्रुप को,
1: उनका एक सवाल था ना मोहन पासवत जी का कि ये ग्रुप अलग अलग क्यों हो जाता है, हम लोग तो आदमी सब लोग हैं,
2: ये तो बना हुआ है ना, लेकिन तो अलग है। अब ये जेनेटिक होता है कि उसमें भरे माता और पिता से ब्लड आते हैं, माँ माँ और मैं कौन सा ग्रुप था, पिता में कौन सा ग्रुप, उस हिसाब से फिर
1: फिक्स होता है।
2: लेकिन जो चार ग्रुप बने हुए हैं
1: अच्छी
2: इस तरह से खोज किया गया, साइंटिफिक
1: जी
2: उससे सीखा गया।
1: बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, वो अगर पूरा डीप अगर हम जाएं तो एक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसमें, क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से होती है, है ना। और लेकिन एक बात तय है डॉक्टर साहब, जन्म से जिस आदमी का जो ब्लड ग्रुप है वो आजीवन वही बना रहता है, वो कभी बदलता नहीं है, ये बात तो तय है। आपने कहा ओ ए बी और ए बी, ये चार ग्रुप हैं, और इसी चार ग्रुप वाले जो हैं कौन किसको ब्लड दे सकते हैं, कौन किसको ब्लड नहीं दे सकते हैं, ये अगला सवाल है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये भी है कि ये आर एस फैक्टर जो है वो होता क्या है, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव।
2: आर एस फैक्टर, आर एस होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है, किसमें है किसमें नहीं है,
1: अच्छा।
2: है तो पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है, ये होता है उस जो होता है उसमें एंटीबॉडी पर डिपेंड करता है।
1: अब हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम में कि कौन ग्रुप के लोग किस ग्रुप को दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर किनको कहा जाता है, ये सारी चर्चा करेंगे। लेकिन एक श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे हम बात कर लें। हेलो हेलो,
3: हाँ सर
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: हमारा नाम देवेंद्र गुप्ता हुआ, देवेंद्र प्रसाद गुप्ता। हम जो है ना रत्नपट्टी से बोल रहे हैं कि हमने से थोड़ा वजन हमारा बढ़ गया।
1: अच्छा जी,
3: तो हम सोचते हैं कि रक्तदान करेंगे तो वजन कम करेगा क्या।
1: अच्छा, रक्तदान के फायदे तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये सब फायदे हैं कि रक्तदान करने से आपका थायराइड, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, और
3: मेरा ये है कि हो सकता है रक्तदान करने से वजन कम हो।
1: जी डॉक्टर साहब बताइए।
2: सबसे पहले देवेंद्र जी नमस्कार, आपका एज क्या हो रहा है?
1: 67।
2: नहीं आप नहीं दे सकते,
1: आपकी उम्र 65 से ज़्यादा हो गई, 60 से ज़्यादा हो गई, तो आप रक्तदान के बारे में अभी मत सोचिए, क्योंकि गाइडलाइन यही है कि 60 से ऊपर जो लोग हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, किस ब्लड ग्रुप के लोग जो है ना वो किसको अपना खून दे सकते हैं
2: अभी के समय में? जिनका जो ग्रुप है वही ग्रुप चढ़ता है।
1: ठीक,
2: वैसे पहले था कि जो यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप को कहा जाता है, और रिसिपिएंट एवी वाले को कहा जाता है
1: जी।
2: एवी वाले जो हैं सो लेने वाले हैं, सभी से ले सकते हैं, और ओ ग्रुप जो है वो सभी को दे सकते हैं, उसमें भी अगर आ रहे वो नेगेटिव है तो सभी को दे सकते हैं
1: जी।
2: लेकिन ये एक्यूट इमरजेंसी, मान लें किसी ब्लड बैंक में ऐसा हुआ कि जो ग्रुप हम ढूंढ रहे हैं और नहीं है मेरे पास कोई ब्लड ग्रुप
1: जी,
2: तो वो नेगेटिव है, यूनिवर्सल डोनर है, हम दे सकते हैं।
1: अच्छा, लेकिन प्रयास यही होता है कि सेम ब्लड ग्रुप हो तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। एक सीधा सा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना, जैसे खून हमने दिया इंस्टेंटली, जो रक्तदाता है और जो रक्त लेने वाला आदमी है, क्या वो एक साथ ले सकता है? एक दूसरा मेथड क्या है कि ब्लड बैंक में जो इकट्ठा किया हुआ है खून वो चढ़ाया जाता है, ये बातें क्या है, क्या ये अनुमति है, क्या कि नियम क्या है?
2: होना चाहिए कि जो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक हैं उनमें जो ब्लड या ब्लड अवयव रक्त अवयव जो रखे हुए हैं वो रक्त लेके मरीज को चढ़ावे तो ज़्यादा सुरक्षित है।
1: और
2: वो पिक्चरों में होता है कि आप यहाँ लेटा हुआ दोनों चढ़ रहा, वो नहीं होता है। सामने वाला जो उन्होंने रक्त दिया उनका तो हम जाँच नहीं करेंगे।
1: बहुत लोग इस तरह की

0: मनशा पाले रहते हैं कि हमें इतना धन प्राप्त हो जाए तो हम ब्लड किसी को दे देंगे और हमारी कमाई हो जाएगी, ऐसा ध्येय लेके चलना चाहिए नहीं, क्योंकि ये होना भी नहीं चाहिए, ये अच्छी बात है।
1: कहा गया है कि रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। हम आप जाते हैं किसी की बेटी में विवाह में कुछ खर्चा करते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन इसका विकल्प नहीं है।
0: दान देने के बाद नहीं, दान देने के बाद प्राप्ति की बात कहाँ होती है। अगर हमने डोनेट किया है तो वो डोनेट है, दान है, शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। दान दी हुई चीजें हम वापस कैसे ले सकते हैं, उस बदले में हम क्या कामना करें, ये भी बात है। एक श्रोता और जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: हरे राम पासवान झंझारपुर से बोल रहे हैं सर।
0: हाँ हरे राम पासवान जी बताइए।
2: ब्लड ग्रुप कहाँ पर चेक करवा दे जो पता चल जाएगा कि है कि नहीं है।
1: झंझारपुर में जो रजिस्टर्ड जांच घर खुला होगा उसमें जांच करवा सकते,
0: किसी भी जांच घर में ये जांच हो जाती है। हरे राम पासवान जी, किसी भी जांच घर में, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ भी ब्लड बैंक है, जहाँ भी ब्लड बैंक है, जहाँ पर आप चाहें रक्तदान देना, वहाँ भी ये जांच हो जाती है। उसके साथ साथ और भी जांच हो जाती है, उसके साथ साथ HIV की जांच, हेपेटाइटिस की भी जांच हो जाती है,
1: मलेरिया, सिफिलिस,
0: ये सारी जांच होती है। इस पर अभी हम डॉक्टर साहब से चर्चा करने ही वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरे राम पासवान जी। कौन कौन सी जांच हो जाती है रक्तदाता
1: जब हमने रक्तदान किया, तो हम किन्हीं भी मरीज को अगर रक्त देते हैं तो उससे पूर्व हम 5 से 6 तरह की जाँच करते हैं। पहले तो उस बैग में जो रक्त लिए, संग्रह किए, उनका कौन सा ग्रुप है, पहले ब्लड ग्रुप हो गया जिन्होंने दिया, साथ में फ्री में बिना किसी का हम उनका हेपेटाइटिस बी,
0: हेमोग्लोबिन,
1: हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरिया और सिफिलिस,
0: अच्छा
1: ये जांच करते हैं। अगर किन्हीं में ब्लड में ये आता है तो वो जो रिक्वेस्ट फॉर्म भरे रहते हैं उस फॉर्म में वॉलंटियर जो ब्लड फॉर्म भरा रहता है रक्तदाता फॉर्म
0: जी,
1: उसमें उनसे हम मोबाइल नंबर लेते हैं, सब कुछ देते हैं। अगर किसी भी रक्तदाता में वो ब्लड निकलता है कोई चीज़, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV कुछ भी, उनके मोबाइल पर नंबर हम सूचना देते हैं, उनको ला के यहाँ पर DMCH में फ्री इलाज होता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: ये फायदे उनको।
0: एक श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: हाँ मैं जयशंकर झा बोल रहा हूँ सर।
0: शिवशंकर झा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: हाँ मैं अपना गांव लदर गांव से बोल रहा हूँ
0: जी। क्या जिज्ञासा है
3: सर? मेरा प्रश्न ये कि है कि कोई अगर बैलेंस डाइट खाना खाता है
0: जी,
3: ठीक है, हाँ मतलब बढ़िया भोजन करता है, फल खाता है, सेब खाता है, संतरा खाता
0: सही,
3: है
0: सही,
3: तो उसका ब्लड और एक जो साधारण अति साधारण खाना खाता है, मतलब जो है साधारण खाना खाता है, मतलब जो बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है, तो दोनों के ब्लड में क्या अंतर होंगे कि मतलब क्या?
0: मैं समझ गया आपके सवाल,
3: आपके
0: आपके सवाल के जड़ में हम पहुंच गए हैं। शिवशंकर झा जी, आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर कोई ब्लड डोनेट करता है और ब्लड डोनेशन के बाद उसकी जो भरपाई होनी चाहिए, तो जिसकी डाइट अच्छी है तो उसकी भरपाई तो अच्छे तरीके से हो जाएगी, लेकिन जिसकी डाइट उतनी अच्छी नहीं है तो उन्हें तो दिक्कत होगी, ये हमें लगता है। डॉक्टर साहब ये सवाल पूछ रहे हैं।
1: नहीं ऐसी बात नहीं है, जो अगर कोई भी, हमने पहले कहा कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं जिनका 12 ग्राम से ऊपर है ब्लड है, वो रक्तदान कर, 12 से ऊपर रहना चाहिए, रक्तदान करते हैं, उन्हें 30 से 36 घंटे में वो ब्लड पुनः उतना मैनेज कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं।
0: देखिए समझिए इस बात को शिवशंकर झा जी, डॉक्टर साहब का कहना है कि जो जो लोग एनेमिक हैं, जिनका खान पान अच्छा नहीं है, उनका जो ब्लड हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो तो नीचे रहेगा, है ना, इस बात को समझिए। जो ऑलरेडी जिनका खान पान सही नहीं है, उनके शरीर में जो खून की जो मात्रा है वो ऑलरेडी कम होगी, और जब वो मात्रा हेमोग्लोबिन लेवल कम होगी तो उनसे रक्त तो लिया ही नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जब रक्तदान करता है, स्वस्थ व्यक्ति ध्यान दीजिएगा, उसके शरीर से लिया हुआ, देखिए पहली बात तो समझ लीजिए कि कितना खून आप देते हैं।
1: एक यूनिट हम लोग लेते हैं तो 2 तरह के बैग आते हैं, लेकिन मेरे यहाँ DMCH में 350 ml, यानी कि जो आपके शरीर में है उसका less than 10%, 4.5 लीटर रहता है खून रहता है, उससे less than 10% ब्लड आपका निकलता है।
0: मात्र 350 ml खून एक यूनिट में लिया जाता है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो 36 घंटा आते आते है ना, जो ब्लड सेल्स है, जो नया ब्लड

0: ब्लड सेल बनना शुरू होते हैं, जैसे आपने खून दिया और जो कमी आई उसकी भरपाई शरीर अपने आप करता है, और जो नया ब्लड सेल है वो उसकी जो बनने की जो सीमा होती है ना, जो गति होती है वो तेज हो जाती है और 36 घंटे में उसकी भरपाई हो जाती है। बावजूद इसके अगर आप रक्तदान के बाद अपना खान पान बैलेंस्ड रखते हैं, बढ़िया रखते हैं, तो मदद मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहले भी रक्तदान से पहले भी आपको स्वस्थ रहना है, रक्तदान के बाद भी आपको स्वस्थ रहना है। डॉक्टर साहब, हर जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज
1: ने हर एक जिला में ये ब्लड बैंक खोल दिया है, हर एक जिला में, वहाँ जाइए, सरकारी सब खुला हुआ है,
0: वहाँ जाओ, बिल्कुल वहाँ जा करके। और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी रक्तदान शिविर लगाते हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: जी मैं सिंहन झा, मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल सर ये, हम लोग के गाँव में है
0: जी,
2: तो यहाँ पर तो शिविर हम लोग तो करते हैं कि हम लोग अगर खून देना होगा
1: देखिए नित्य मोहन जी, रक्तदान के लिए होता है कि अगर आप या तो जो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक है उसमें अगर रक्तदान करिए, या नहीं कोई संस्था है जो लगाना चाहते हैं शिविर, अगर मधेपुर लगाना चाहते हैं और 25-30-40 रक्तदाता हैं ब्लड देने के लिए, तो आप एक एक लेटर दीजिएगा ब्लड बैंक को और टीम वहाँ आपके यहाँ पहुँच जाएगी, आपके घर पहुँचेगी ब्लड लेने के लिए।
0: भ्रांतियों को लेकर चर्चा कर रहे थे, कौन कौन सी भ्रांतियाँ हैं जिससे लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है?
1: जागरूकता में है कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है जी। जिस कारण से लोग होता है कि हम ब्लड देंगे खून कम हो जाएगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे, मजदूर वर्ग हैं हम काम नहीं कर पाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पहले ही कहा कि कौन ब्लड दे सकते हैं, जिनका 12 ग्राम 12.5 ग्राम से ऊपर रहेगा खून, उसे कोई भी हो वो रक्तदान कर सकते हैं। एक दूसरी बात, जो लाल रक्त कण हैं उनका जीवन जो होता है 90 से 120 दिन का होता है। आप ब्लड दें ना दें, उनका टूटना और बनना ये प्रक्रिया।
0: अच्छा, एक सवाल भी आया था, श्वेत रक्त कण,
1: हाँ
0: व्हाइट ब्लड
1: जो लाल खून भी होता है और व्हाइट भी होता है, लाल रक्त कण जो RBC जो कहते हैं रेड ब्लड सेल, तो उसके बारे में बताते हैं कि 90 से 120 उसका लाइफ होता है। आप दीजिए नहीं दीजिए, उसका टूटना फिर नया बनना ये प्रक्रिया शरीर में चलते रहता है। हम जो बैग में लेते हैं 350 ml, उस बैग से हम एक मशीन होता है कंपोनेंट मशीन, उस मशीन में डाल के हम अलग करते हैं व्हाइट जो ब्लड, आपने कहा हमने प्लेटलेट बनाते हैं और प्लाज्मा बनाते हैं। जब कभी डेंगू फैलता है प्लेटलेट लेवल घटता है तो वही प्लेटलेट जो है काम आता है। यानी एक आदमी से हम अगर लिए उस टाइम पर हम ब्लड, हम तीन चीज़ बनाए तो तीन आदमी की जान बच सकती है उसमें।
0: अच्छा, एक यूनिट में
1: जी तीन आदमी जान बच,
0: तीन व्यक्ति की जान बचाई जा सकती
1: जी,
0: है
1: जी बिल्कुल,
0: अलग अलग तरीके
1: जी,
0: से प्लेटलेट्स, जिसका प्लेटलेट्स काउंट कम है वो प्लेटलेट्स चढ़ा करके, जिसे ब्लड की जरूरत है उसे चढ़ा करके, तो ये फायदे हैं।
1: बर्न केस है उसमें प्लाज्मा वगैरह चढ़ता है,
0: प्लाज्मा उसको लेकर के भी। रक्त अधिकोष में जो जमा होता है क्या उसकी भी लाइफ होती है?
1: हमारे शरीर में जब तक ब्लड है वो सुरक्षित है, आप कभी भी रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन जब एक शरीर से निकल गया बैग, बैग में जब हम बैग ले लिए तो उसके अलग अलग उसके लाइफ होते हैं।
0: अच्छा,
1: जो RBC वाले लिए हम होल ब्लड जिसको कहते हैं या उसका लाइफ 35 दिन का होता है। अच्छा, जिस दिन से निकाले उस दिन से हम 35 दिन तक
0: उसका इस्तेमाल कर लेते हैं,
1: उसको हम लोग 35 दिन का अंदर उसको इस्तेमाल कर लेना है। जो प्लेटलेट है उसका लाइफ मात्र 5 दिन होता है।
0: अच्छा,
1: 5 दिन अगर खत्म करें तो खराब होगा। प्लाज्मा है उसका लाइफ 1 साल होता है।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बात और भी है कि आपने ये बताया कि रक्तदान देने को लेकर के इतनी बातें हैं, लेकिन एक सवाल जो आया था ना कि हॉस्पिटल में अस्पताल में जब हम जाते हैं किसी अपने परिजन, अपने घर के परिवार के किसी लोग को या किसी भी परिचित के लिए खून की ज़रूरत जब पड़ जाती है तो बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, ये भागदौड़ क्या है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए पहले भी कहा गया, अभी मैं बोल रहा हूँ कि रक्त कहीं बनाया नहीं जाता है,
0: ठीक,
1: इसलिए इसको रक्तदान महादान कहा जाता है। और जो मिथक था वो हम तोड़ देते हैं, हम अगर रक्त देते हैं तो हमें आपको वो ब्लड दिया जाता है। अगर DMCH में आप हैं तो एक्सचेंज आपने जो ब्लड दिया बदले में जो आपको डिमांड है वो ग्रुप आपको दिया गया,

0: प्राइवेट में कोई भर्ती होता है तो गवर्नमेंट का प्रोसेसिंग फी 500 रुपये लगता है, वो भी नहीं लगेगा आपको, यहाँ DMCA से फ्री है।
1: अच्छा,
0: फ्री ब्लड दिया देना पड़ेगा, मतलब मिल जाएगा आपको, फ्री में ब्लड चढ़ेगा, सब इलाज फ्री में सब कुछ होगा। दरभंगा शहर में ही मेन टाउन में 5 ब्लड बैंक हैं, लेकिन कोई बिरौल कुसरस्तान से आते हैं
1: जी,
0: तो उनको जो है हॉस्पिटल का रिक्वेशन फॉर्म आना चाहिए, साथ में पेशेंट का ब्लड सैंपल चाहिए,
1: ठीक,
0: और कोई रक्तदाता से जो ब्लड देंगे,
1: ये लेकर अगर आ जाए आपके यहाँ DMCH में तो उन्हें
0: उपलब्ध जी, उपलब्ध जो ब्लड रहता है वो दिया
1: जाता है। अच्छा, एक बात और भी, जो नेगेटिव खून ए नेगेटिव बी नेगेटिव जिसकी उपलब्धता कम होती है, उसको लेकर के एक बड़ा उहापोही की स्थिति हो जाती है, ऐसे में क्या
0: तो करें? लेने वाले भी कम और देने वाले भी कम, चूंकि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो जब रहता है तो उन्हें दिया जाता है ब्लड। जैसे कि पहले अपने कहा कि जो ब्लड निकल गया शरीर से उसका लाइफ होल ब्लड का हो गया 35 दिन के लिए, तो हमको उसको निकालना है, लेकिन कभी कभी दिक्कतें होती
1: हैं। चलते चलते आज के दिन विश्व रक्तदाता दिवस है, क्या कहना चाहेंगे, कौन सा संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
0: हर एक बार अलग होता है, इस बार जो हमारा है कि वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी जो है, जो थीम जो है वन ड्रॉप ह्यूमैनिटी जो है वो गिव ब्लड और सेव लाइफ। तो जो कोई मेरे रक्तदाता हैं, रक्तवीर हैं मेरे, वो अपने स्तर से दूसरे को कन्विंस करते हुए, हम लोगों से जहाँ तो होगा पत्राचार के माध्यम से, रेडियो से, दूरदर्शन से, जैसे भी जिस मीडिया से सूचना दे के रक्तदान करवाएं। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, इससे अपने भी अपना भी फायदा और दूसरे को भी जान बचता है।
1: तो ये कहते हुए कि अपना लहू भरकर लोगों को बांट गए पैमाने, लोग दुनिया भर को याद रहेंगे हम जैसे दीवाने लोग। हेलो जिंदगी में आज का विषय था रक्तदान क्यों है महादान, बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। आपने अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण समय आज के दिन खासकर हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप लोगों को धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, मिलेंगे अगले रविवार को दिन में 11 बजे किसी और विषय, किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद के साथ साथ संजय को विदा दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना रविवार 14 जून 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी का संपादित अंश। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, आप आकाशवाणी के सभी कार्यक्रमों को अपने स्मार्टफोन पर न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी। अगर आपने न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही करें। अपने फोन के प्ले स्टोर में जाएं और वहां पर सर्च करें न्यूज ऑन AIR, उसे डाउनलोड करें और आकाशवाणी के किसी भी केंद्र को अब जब चाहे जहां चाहे सुन सकते हैं। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।
0: AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी। अगर आपने न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही करें। अपने फोन के प्ले स्टोर में जाएं और वहां पर सर्च करें न्यूज ऑन AIR, उसे डाउनलोड करें और आकाशवाणी के किसी भी केंद्र को अब जब चाहे जहां चाहे सुन सकते हैं। इस समय आप सुन रहे हैं

0: हैं आकाशवाणी दरभंगा। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विवरण में। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 1:15 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं दोपहर 2:05 पर। इलाकाई खबरें 2:10 पर आप सुना करते हैं रोजगार सूचना। दोपहर समाचार का प्रसारण समय होता है 2:15 पर और 2:30 पर आनंद ले सकेंगे आप पुनः फिल्म संगीत का। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे कुछ बज्जिका लोकगीत। ये थे हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5:00 व श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के साथ की जाती है। आज आप सुनेंगे इसमें कार्यक्रम तरुण कुसुम। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 5:40 पर। शाम 6:10 पर आप सुनते हैं विद्यापति गीत और मैथिली संवाद का प्रसारण समय होता है शाम 6:25 पर। गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम नव ऊर्जा शाम 6:30 पर और 7:00 किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। जिले की हलचल के साथ प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं शाम 7:30 पर। मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण समय होता है रात्रि 8:15। पर समाचार संध्या 9:00 News@9 और 9:15 पर उर्दू खबरें। सर्वभाषा विविधा आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। 9:45 पर देववाणी और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फनकार। दस बजकर 30 मिनट पर आनंद ले सकेंगे आप फिल्म संगीत का। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार होंगे और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। सभा की समाप्ति रात्रि 11:10 पर की जाएगी। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित की जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है देशभक्ति गीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उपकार का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार गुलशन बावरा और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आनंद लीजिए अब फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म उमराव जान के इस खूबसूरत गीत के साथ, इसे गाया है आशा भोसले ने। गीतकार शहरयार और संगीतकार हैं खय्याम।

श्रोताओं, आज शहरयार गीतकार शहरयार को याद करने का दिन है। उन्हें याद करते हुए आज हमने उनके लिखे हुए दो गीत आपको सुनवाए।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम जारी है इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का भी जन्मदिन है, तो उन्हें याद करते हुए आइए उनके गाए हुए और संगीतबद्ध किए हुए कुछ चुनिंदा गीत आपको सुनवाते हैं।

ये गीत हमने लिया है फिल्म प्यासा से, आवाज हेमंत कुमार की है, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

0: विशेष नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
3: अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। अंतराल से पहले हम आपको सुनवा रहे थे
4: अनुपमा का एक गीत। इसी फिल्म का एक और गीत सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर की ही आवाज में। गीतकार और संगीतकार की जोड़ी वही है, कैपी आजमी और हेमंत कुमार।

अरे हमार

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। श्री मोहन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू होने के 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। एजेंसी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उनकी टीम सर्वरों पर लोड की लगातार निगरानी कर रही है। एजेंसी ने यह भी आश्वासन दिया है कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले समय पर प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22

आपके साथ हल्की बारिश की

आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज कैमूर ज़िला के भगवानपुर ब्लॉक वाक़े पहनिया पंचायत में मुनक़दा सहयोग शिविर में शिरकत की। उन्होंने मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करके रियासत की खुशहाली के लिए दुआएं की। वज़ीर आला ने जनसंवाद मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में खिदमात, सुशासन और गरीब फलाह

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है रोजगार सूचना।

सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटरिंग में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटरिंग ने 951 पदों पर भर्ती निकाली है। वेबसाइट है catc.in, इस पर जाकर आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही आवेदन भी कर सकते हैं। इस आवेदन को करने के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वह चाहिए ITI।

सबसे बड़ी आबादी

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और हम उपस्थित हैं युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युवाणी को लेकर। अभी से लेकर के शाम के 5:40 तक हम आपके साथ बने रहेंगे इस कार्यक्रम में, और अन्य दिनों की भांति आज भी आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में।

0: जो शहर जानते हैं आप, वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: संख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुँचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे दिवाकर सिंह के स्वर में लोकगीत। अब सुनिए हेमकांत झा के स्वर में।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हेमकांत झा के स्वर में ये लोकगीत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गीत पसंद आए होंगे। और देखिए ना दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में ही हमने आपसे चर्चा की थी कि आज हम आपको एक विशेष बातचीत भी आपके साथ हमारी होगी। तो देखिए, आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और जन कल्याणकारी योजनाएं। सचमुच स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। बिना स्वास्थ्य के हम यदि स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं होता तो शायद हम कुछ भी करने के लायक नहीं होते हैं, न तो तन से न मन से। तो जीवन में स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और जन कल्याणकारी योजनाओं किसी भी राष्ट्र की प्रगति, नागरिकों की सुरक्षा और उनके जीवन स्तर को सुधारने का मूल आधार है। हाल के वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि की है। दूर दराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित कुछ प्रमुख और प्रभावी योजनाओं और पहलों का या पूर्व का विवरण इस प्रकार है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए, यह आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अर्थात यह दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीब और कमजोर परिवारों के प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। इस योजना ने वंचित वर्ग के लोगों को महंगे अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा दी है। इसके अतिरिक्त हाल ही में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान व वंदना कार्ड की शुरुआत की गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इस विषय पर श्रोताओं हम पुनः आगे चर्चा करेंगे। तब तक आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे संतोष कुमार यादव, संतोष यादव के स्वर में ये लोकगीत। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये गीत पसंद आए होंगे। इसी गीत के साथ युवानी कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है कुछ फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं किस्मत फिल्म का यह गीत, उदित नारायण एवं साधना सरगम की आवाज में, संगीत निर्देशन आनंद मिलिंद का है और बोल

अभी आप सुन रहे थे बंदूक और गुलाब फिल्म का यह गीत तान दीवान और राजा सिन्हा की आवाज में। बोल थे दिलीप वर्मन के और संगीत निर्देशन शशि कुमार। कार्यक्रम के

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे फिल्म 777 चार्ली का गीत। गायक कलाकार थे नवीन पॉल, स्वरूप खान, बोल थे साइनी दास के, और संगीत निर्देशन नवीन पॉल का था। इसी गीत के साथ दोस्तों आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तनाव।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

0: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। बाल समय
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में दिल्ली केंद्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने

चार साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जाँच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत, गांव घर संध्या 6:30 पर तथा खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7:00। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे इसी सभा में संध्या 7:52 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंहहार का समय होगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविधा कार्य

क्रम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, विषय है संस्कृत भाषाया संरक्षणम एवं संवर्धनम। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवनारायण झा। रात्रि 9:45 पर आप सुनेंगे देववाणी कार्यक्रम। एक फनकार कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किए जाएंगे और फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे रात्रि 10:30 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब जानकारी प्राप्त कीजिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन। विषय होगा मनुष्यक सब आलेख, आलेख एवं वाचन होगा सुरेंद्र झा का। कृषि चर्चा आप सुनेंगे 5:55 पर, विषय होगा पशुओं में टीकाकरण आवश्यक। 6:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा, विषय होगा आंख में चोट लगने पर क्या करें। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह। वंदना कार्यक्रम प्रातः 6:10 पर प्रसारित किए जाएंगे और रामचरितमानस कान आप सुनेंगे 6:40 पर। नमस्कार मिथिला कार्यक्रम 7:05 पर प्रसारित किए जाएंगे। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त होगा दिन में 9:10 पर। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत। शास्त्रीय संगीत दिन के 11:00 प्रसारित किए जाएंगे और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 30 आप सुनेंगे 11:30 पर। पुनः आप दोपहर 12:00 आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। नारी संसार कार्यक्रम 12:30 पर प्रसारित किए जाएंगे। देशभक्ति गीत 1:10 पर प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे दोपहर 1:15 पर। रोजगार सूचना 2:10 पर प्रसारित किए जाएंगे और फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे दोपहर 2:30 पर। सुगम संगीत का आप आनंद लेंगे दोपहर 3:00। शाम 5:00 आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम तथा 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। गांव घर संध्या 6:30 पर प्रसारित किए जाएंगे और खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7:00। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे रात्रि 7:52 पर। मैथिली कार्यक्रम 8:15 पर रात में प्रसारित किए जाएंगे और 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। लोकमाधुरी कार्यक्रम रात्रि 10:00 प्रसारित किए जाएंगे और 10:30 पर आप सुनेंगे गीतों के रंग कार्यक्रम। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत, कलाकार हैं काशीनाथ झा किरणा।

अभी आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से विद्यापति गीत सुन रहे हैं। अब सुनिए रामकुमार मल्लिक के स्वर में ये विद्यापति गीत।

अभी आप विद्यापति गीत सुन रहे थे। कलाकार थे राम कुमार मल्लिक। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे मैथिली संवाद, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा एफएम रेनबो पटना सो प्रस्तुत है संवाद, संवादक संग हम छी कामिनी ठाकुर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि अछि जे राज्य सरकार आम लोक सभक समस्या के समयबद्ध समाधानक लेल प्रतिबद्ध अछि। मुख्यमंत्री आइ कैमूर जिलाक भगवानपुर प्रखंड स्थित पनहिया पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेलनि। मुख्यमंत्री कहलनि जे पछिला एक मास में सहयोग शिविरक माध्यम सँ 3,03,678 प्राप्त भेल आवेदन में सँ 2,61,618 आवेदन निष्पादित कयल जा चुकल अछि, जे कुल प्राप्त आवेदनक 90% अछि। ओ कहलनि जे सहयोग शिविरक माध्यम सँ लोक सभक शिकायत के त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कयल जा रहल अछि आ निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहि भेला पर संबंधित अधिकारी लोकनिक विरुद्ध कड़गर डेग उठाओल जायत। एहिसँ पहिने ओ माँ मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कऽ राज्यक सुख समृद्धि के कामना कयलनि। एहि अवसर पर मुख्यमंत्री लगभग 196 करोड़ टाकाक लागत सँ 60 विकास योजना सभक उद्घाटन आ शिलान्यास कयलनि। ओ कहलनि जे माँ मुंडेश्वरी धाम में रोपवे निर्माणक दिशा में

0: शीघ्रहि पहल कयल जायत। संगहि मंदिर परिसरक विकास आ वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे के माँ मुंडेश्वरी धाम सँ जोड़बाक लेल सेहो आवश्यक डेग उठाओल जायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा सुशासन आ गरीब कल्याणक 12 वर्ष पूरा भेला पर आई सँ प्रदेशक सभ 534 प्रखंड में सहयोग सँ जन कल्याण शिविर आयोजित कयल जा रहल अछि। 18 जून धरि चलय वाला एहि शिविर में केंद्र आ राज्य सरकारक विभिन्न योजना सँ संबंधित आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, EKYC आ लाभ वितरण सुविधा एकहि ठाम उपलब्ध कराओल जा रहल अछि। शिविर में हेल्प डेस्क, प्रशिक्षित स्वयं सेवक सहायता आ स्वास्थ्य जांच शिविरक सेहो व्यवस्था कयल गेल अछि, जाहि सँ लोक सभ के आवश्यक मार्गदर्शन आ सेवा सुगमता सँ भेट सकय। एम्हर सुपौल जिला के निर्मली प्रखंड स्थित बेला सिंगार मोती पंचायत में जिलाधिकारी सावन कुमार आ पुलिस अधीक्षक शरथ RS सहयोग शिविरक दरमियान पात्र लाभार्थी लोकनिक मध्य जॉब कार्डक वितरण कयलनि। पूर्व मध्य रेल 17 जून के होबय वला मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लऽ कऽ पाटलिपुत्र पटना जंक्शन सहित विभिन्न स्टेशन सँ 30 परीक्षा स्पेशल ट्रेनक परिचालन करत। ADG रेल डॉक्टर कमल किशोर सिंह जनौलनि जे परीक्षा में लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थी लोकनिक सम्मिलित हेबाक संभावना अछि, जेकरा देखैत आइ आ काल्हि विभिन्न रूट पर विशेष ट्रेन सभक परिचालन कयल जायत। पाटलिपुत्र जंक्शन आ पटना जंक्शन सँ अररिया, नवगछिया, भभुआ रोड, गया, बक्सर, राजगीर आ झाझा सहित विभिन्न गंतव्यक लेल विशेष ट्रेन चलाओल जायत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA जनौलक अछि जे अगला नीट UG पुनर्परीक्षाक लेल पछिला 24 घंटा में 10 लाख सँ बेसी उम्मीदवार अपन प्रवेश पत्र डाउनलोड कऽ लेलनि अछि। पुनर्परीक्षा 21 जून के होयत। एहि मध्य पारदर्शिता अनबाक आ पेपर लीक के आशंका के समाप्त करबाक लेल सरकार 22 जून धरि टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश पठेबा पर रोक लगा देलक अछि। NTA कहलक अछि जे ई प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन आ ओकर तुरंत बाद धरि लागू रहत। एजेंसी कहलक जे टेलीग्राम के 30 तारीख धरि पहिने सँ पोस्ट कयल गेल संदेश के संपादित करबाक सुविधा के सेहो बंद करबाक निर्देश देल गेल अछि। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन नीट UG पुनर्परीक्षा सँ पहिने सुरक्षा आ के तैयारी समीक्षा के लेल एक उच्चस्तरीय बैसक कयलनि। ओ विद्यार्थी लोकनिक सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था आ परीक्षा प्रक्रिया के निष्पक्षता पर विशेष ध्यान दैत एहि पुनर्परीक्षा के लेल राज्य सरकार द्वारा कयल गेल तैयारी सभक समीक्षा कयलनि। गृह सचिव सभ राज्य सरकार आ केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्रीय एजेंसी सबके सुरक्षा प्रोटोकॉलक पालन करबाक निर्देश देलनि। श्री मोहन राज्य आ केंद्र शासित प्रदेश सभ सँ विद्यार्थी लोकनिक लेल सुगम यात्रा सुनिश्चित करबाक अपील कयलनि अछि। सर्वोच्च न्यायालय आई केंद्र आ राज्य सभ सँ एक याचिका पर जवाब मांगलक अछि। एहि याचिका में आरोप लगाओल गेल अछि जे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्डक दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान आ आवासीय पता के प्रमाणक रूप में कयल जा रहल अछि। याचिका में ई निर्देश देबाक मांग कयल गेल अछि जे एकर उपयोग मात्र पहचान सत्यापन धरि सीमित राखल जाय। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आ न्यायमूर्ति V मोहनक पीठ केंद्र आ सभ राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सबके नोटिस जारी कयलक अछि। मौसम विभाग गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद आ अरवल जिला के किछु भाग में अगला 2 सँ 3 घंटा में मध्यम वर्षा आ ठंडा के लऽ कऽ ऑरेंज अलर्ट जारी कयलक अछि। एहि दरमियान 40 सँ 50 किलोमीटर के गति सँ हवा चलबाक सेहो संभावना अछि। पश्चिम चंपारण जिलाक बेतिया के अंचल कार्यालय में पदस्थापित क्लर्क राजकुमार मिश्रा के निगरानी विभागक टीम 15,000 टाका रिश्वत लैत रंगे हाथ गिरफ्तार कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गाम घर एवं खेती गृहस्थी।

गाम घर सुननिहार सुधी श्रोता लोकन के विजय कुमार सिन्हा के नमस्कार। श्रोतागण, आई गाम घर के दलान पर हमरा संग

0: गोपी भाई भाई सर। तो गोपी भाई हूँ के नमस्कार।
1: नमस्कार विजय भाई, संगे संग गाम घरक श्रोता लोकन का सेहो नमस्कार। आजुक दिन मंगल है आ मंगल के हम सब नव ऊर्जा कार्यक्रम प्रसारण करते आ नव ऊर्जा कार्यक्रम जो हुआ वो युवा लोकन के लिए होते तो आजुक कार्यक्रम में युवा लोकन का हार्दिक स्वागत है। देखियो विजय भाई, युवा लोकन जो होते हैं वो अथाह ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। हुनका लग ऊर्जा अथाह होते आवश्यकता एक गप के कि उनक ऊर्जा के उचित दशा और दिशा दिल जाए। एहिमे अहाँ के सूक्ष्म और लघु उद्योग जे वो कम निवेश में स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के सबसे पैघ सशक्त माध्यम है। ये स्थानीय संसाधन के उपयोग का आय बढ़ाबे में और अर्थव्यवस्था के मजबूत करे में पैघ भूमिका निभावत है। सूक्ष्म और लघु उद्योग के जो लाभ है विजय भाई कि कम पूंजी और आसान तकनीक, ई बहुत कम नि

0: जा सकैत अछि। सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण आ वित्तीय सहायता प्रदान कऽ कऽ युवा लोकनिके आत्मनिर्भर बना रहल छथि। आ हमर सभक राज्य बिहारमे जेना राज्यमे बिहार लघु उद्यमी योजना आ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जेना योजना सेहो चलाओल जा रहल अछि, जाहिमे 5-10 लाख रुपैआ धरि परियोजना लागत पर भारी अनुदान जकरा सब्सिडी कहै छी आ यहाँके देल जाइत अछि।
1: अच्छा अच्छा।
0: आ स्वरोजगारक लेल प्रमुख लघु उद्योग हमरा लोकनि अपन अपन क्षेत्रमे प्रमुख लघु व्यवसाय शुरू कऽ सकै छी, जेनाकि खाद प्रसंस्करण, तऽ एहिमे भेल मसाला पिसाई, आटा चक्की, अचार, पापड़, बेकरी उत्पाद, एहिमे खाद प्रसंस्करणमे भेल, फूड प्रोसेसिंग जकरा कहै छी अपनासँ।
1: आ दोसर अछि अहाँके वस्त्र आओर परिधान, एहिमे अहाँके सिलाई बुटीक, कढ़ाई, खादी उत्पादन आ घरेलू आओर सजावटी उत्पादमे मोमबत्ती बनेनाइ, हस्तशिल्प आ जैविक खादके निर्माण आ दैनिक उपयोगके वस्तु जेना साबुन अछि, डिटर्जेंट पाउडर अछि या डिस्पोजल प्लेट या कप बनेनाइ, आ एहिमे सरकारी योजना जे अछि ओ अहाँके बड्ड सहायक अछि। भारत सरकार, राज्य सरकार स्वरोजगारक लेल कएटा लाभकारी योजना चला रहल यऽ। आब जेना PMEGP ग्रामीण आओर शहरी क्षेत्रमे नव व्यवसाय शुरू करबाक हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान कयल जाइए, एहिमे सब्सिडी देल जाइए, छूट देल जाइए। आ बिहार राज्य के योजना अहाँ कहबे केलिए कि बिहारमे स्थानीय निवासी युवाक लोकनिक लेल उद्यमी बिहार गवर्नमेंट आओर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना जेहन विशेष योजना चलायल जा रहल अछि। आ एहिमे पंजीकरण के प्रक्रिया सेहो अछि, बुझलहुँ, रजिस्ट्रेशन केना करबै तऽ व्यवसाय शुरू करबाक लेल सरकारी योजनाके लाभ उठेबाक लेल उद्योग आधार उद्यम पंजीकरण निश्चित रूपसँ करबाबी। जँ अहाँ अपन खुदके व्यवसाय शुरू करय चाहै छी तऽ कोन अहाँके रुचि आ कौशल जे अछि कोन क्षेत्रमे अछि, अहाँ कतेक पूँजीसँ शुरू करय चाहै छी, एहिके आधार पर अपना लेल व्यवसायके चुनाव करी आ सटीक लोन सब्सिडी योजनाके जानकारी ली।
0: आयो गोपी भाई, एकरा लेल सरकार जे अछि ओ विभिन्न प्रकारक प्रशिक्षणक आयोजन सेहो करैत अछि, जाहिसँ उद्यमी लोकनिके उद्योग स्थापनाक ज्ञान देल जा सके। आ सरकार एहि बातक लेल खास तौर पर प्रयत्नशील अछि कि देशभरमे उद्यमिता पलय बढ़य आ एकटा एहन संस्कृति पल्लवित होय जाहिमे स्वरोजगार, लघु उद्योगक उत्पादन आ छोट उद्यमक लाभप्रदता बढ़य, सङ्गहि जे सम्भावी अथवा नव उद्यमी छथि हुनका कौशलके निखारल जाए कि ना।
1: आगू हम सब गपशप करब, मुदा ओहिसँ पहिने छोटछिन विराम ली,
0: लऽ लेल जाए।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी, बहुत बड़ा नंबर है ना। पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो

0: पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: छोट छिन्न विरामक उपरांत उपस्थित छियम गोपी भाई आ संघ में छिन्न विजय भाई, तखन हम सब चर्चा करे छलहुँ लघु उद्योग आ सूक्ष्म उद्योग जे अछि ओ स्वरोजगार में बड़ सहायक अछि। आ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जे यऽ ई प्रमुख वित्तीय संस्था जे लघु व्यवसाय के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण प्रदान करैत अछि। जिला उद्योग केंद्र DIC जिला स्तर पर उद्यमी द्वारा आवश्यक सबटा सेवा और सहायता के लेल एक ही स्थान पर सब सुविधा प्रदान करे के लेल स्थापित कयल गेल अछि। तो विजय भाई, जो ई सब जे सुविधा अछि, ए सुविधा के लाभ जो युवा लोकन उठेता तो निश्चित रूप से ओ स्वरोजगार प्राप्त करता, स्वावलंबी हेता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपन प्रमुख योगदान देता। ओना ही अहाँ के अछि कि जे गीतनाद अछि ओहो अहाँ के मानवीय जीवन के ऊर्जावान करिए। आजुक दिन तो मंगल अछि, बजरंग बली के दिन अछि, कहल गेल अछि कि उनका बारे में अहाँक मनोज बंग मारुतुल्य वेगंग जितेंद्रियंग बुद्धिमतांग वरिष्ठम वातात्मजंग बानरत मुख्यंग रामदूतंग षडंग प्रपद्य। मने अहाँक मन के ओ जितने मनोज बंग आ मारुतुल्य वेग हवा के तरह से उनकर वेग छै, जितेंद्रिय बलशाली छै, तो जरा में इतने गुण हुआ ओ अहाँक कतबोक संकट रहा जीवन में ओ संकटो काल को ओ अवसर का काल में बदल दिए। हाँ, तो हुनकर आशीर्वाद से अहाँ पैघ से पैघ संकट के अपना लेल अवसर के रूप में बदल सके छी। तो सुनी जैसे
3: श्याम बिहारी राय के स्वर में
2: ई गीत
3: सुनल।

0: करै छलहुँ हम कि युवा लोकनिमे चरित्र और देशभक्ति की भावना के विकास बड़ आवश्यक है। देखियो भारत जो है युवा लोकन के देश है कि क्या भारतक 65% से बेसी जो आबादी है वो युवा लोकन के हम सब कह सकते कि भारत युवा लोकनिक देश है आ युवा लोकन में चरित्र और देशभक्ति की भावना के विकास निश्चित रूप से हवा के चाहिए क्या तो उनका अथाह ऊर्जा होते आ वो अपन ऊर्जा का उपयोग ज देशभक्ति में लगेता सकारात्मक काज में लगेता तो निश्चित रूप से देशक सर्वांगीण विकास हुए। तो यही विषय पर हम सब से अहाँ एक गुट परिचर्चा सुनी युवाओं में चरित्र और देशभक्ति की भावना का विकास कैसे हो। प्रतिभागी क्षेत्र पंखुरी से दीक्षा प्रिया आर्या झा दीपशिखा बारिक
1: संचालक क्षेत्र गोपीचंद झा और प्रस्तुतकर्ता क्षेत्र असद दाव।
0: तो सुनी हम सब ई अहाँ बाह्य ध्वनांकन पर आधारित ई परिचर्चा
1: सुन।
2: विद्यार्थी में चरित्र निर्माण केना हुआ और राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास केना हुआ ऐ विषय पर आकाशवाणी दरभंगा के दिस से परिचर्चा रखल जा रहल अछि। प्रतिभागी छथि पंखुरी दीपशिखा बारिक आर्या झा और सिदीक्षा। तो सबसे पहिने पंखुरी हम अहाँ से पूछा चाहब कि विद्यार्थी में चरित्रक निर्माण कोना हुए और राष्ट्रभक्ति का भावना के विकास कोना कैल जाय छै हुनका में।
3: युवाओं में चरित्र निर्माण और देशभक्ति की भावना जागृत करना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें परिवार शिक्षा और समाज की सहमित भूमिका होती है। इसे विकसित करने के मुख्य तरीके निम्नलिखित हैं: महापुरुषों के आदर्श और इतिहास का ज्ञान, युवाओं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम, शहीदों की वीरता और स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारों के आदर्शों से परिचित करना चाहिए। इतिहास और विरासत की समझ ही राष्ट्रीय गौरव की नींव रखती है। दूसरा, अनुशासन और नैतिक शिक्षा। स्कूल और कॉलेजों में किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अनुशासन, ईमानदारी और सामाजिक सेवा के मूल्य पर भी जोर देना चाहिए। शिक्षकों और बड़ों के द्वारा इन मूल्यों का स्वयं प्रदर्शन करना सबसे प्रभावी तरीका है। तीसरा, राष्ट्रीय उत्सवों और गतिविधियों में भागीदारी। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अन्य राष्ट्रीय समारोह में सक्रिय भागीदारी से युवाओं में जुड़ाव बढ़ता है। क्विज प्रतियोगिताओं या प्रोजेक्ट वीर गाथा जैसी पहली में से उन्हें वीर गाथाओं के प्रति प्रेरित किया जा सकता है।
2: फिर जानकारी देलों विद्यार्थी लोग तो उनका चरित्रक निर्माण पैघ भूमिका निभावैत अछि इतिहासक ज्ञान, इतिहास का अध्ययन और महापुरुषक गाथा। विद्यार्थी लोग त्याग, बलिदान और राष्ट्रक प्रति प्रेम का भावना जागृत करैत अछि। अब दोसर हमारा आन प्रतिभागी आर्या झा, तो आर्या झा अहाँ कहियो कि विद्यार्थी में चरित्र और देशभक्ति के भावना के विकास कोना।
4: शिक्षक गण में देशभक्ति और चरित्र के निर्माण कुछ इस प्रकार से जैना कि छात्र सबके नैतिक शिक्षा, फिर प्रेरणादायक व्यक्ति व्यक्तित्व से सीखा पड़ता है, सामाजिक सेवा भागीदारी एगो पड़ता है, जे संविधान में हम सबके लिखल छे ओकरा नीक ढंग से समझ का ओकरा प्रैक्टिस करे पड़ता है। तो यह सब से अहाँ एक एक नीक व्यक्तित्व सकै छी और अहाँ अपन चरित्र के निखार का देशभक्ति के भावना के पा सकै छी।
2: अच्छा अच्छा, चरित्र निर्माण में नैतिक शिक्षा के सेहो बड़ महत्व है। सामुदायिक सेवा कहबे के लिए अहाँ के निस्वार्थ सेवा जना सामाजिक काज, विद्यार्थी में देश और समाज के प्रति समर्पण के भावना के विकास करैत अछि। आ रचनात्मक गतिविधि जना देशभक्ति से जुड़ल जे कविता या नाटक या गीत या क्विज के माध्यम से सो ई भावना सुदृढ़ होइत अछि। अच्छा, हमरा लग आब अहाँ के दो आन प्रतिभागी छथि सुदीक्षा प्रिया, कहियो अहाँ विद्यार्थी में विकास का कौन कौन प्रमुख कारक छे, केना चरित्र देशभक्ति के विकास।
5: युवा सब विद्यार्थी सब चारित्रिक विकास, नैतिक शिक्षा, आत्म अनुशासन और नीक मार्गदर्शन संभव है। उनका हर परिस्थिति में सत्य बाजब के चाहिए,

0: युवा सबके अनुशासित रहने के चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहन छथिन जे हमरा ऊर्जावान युवा दिया, हम एहि देश के युवा हुलिया बदल दे। आय डिजिटल युग में जहाँ सूचना बढ़ल है वहाँ अपन नैतिक मूल्यों को बचाए रखन अत्यंत कठिन है।
1: विद्यार्थी में चरित्र और देशभक्ति के भावना, शिक्षा, नैतिक मूल्य, इतिहास ज्ञान और अनुशासित वातावरण के माध्यम से होते है। प्रक्रिया जो है घर से शुरू भकर विद्यालय, शिक्षक का मार्गदर्शन, राष्ट्रभक्ति पूर्ण गतिविधि जना ध्वजारोहण, राष्ट्रीय गीत द्वारा सुदृढ़ होते है। और घर में अभिभावक लोकन के भूमिका पर महत्वपूर्ण होते। अब दीप शिखा बारीक हम जानना चाहब कि विद्यार्थी में चरित्र और देशभक्ति के भावना के विकास में अभिभावक लोकन के केहन योगदान हेबा के चाहिए।
2: अभिभावक लोग घर से ही संस्कार और सुचरित्र के नींव रख सके छे।
1: अच्छा अच्छा हाँ,
2: संस्कार और शिक्षा साथे साथ मिलना जरूरी है।
1: एकदम सही गप करो।
2: युवा सब के अपन गौरवशील इतिहास से जुड़बाक चाहिए ताकि अपन जड़ के वो पहचानब, देश के भक्ति में लीन हो जाए एवं अनुशासन और स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ब। समाज के प्रति उन सब के जागरूकता और जिम्मेदारी घर से ही शुरू हो सके छे। घर के काम में हाथ बताना, देश के प्रति एक प्रेम भाव रखना, शिक्षा में आगे रहना, इस सब युवा के देश के प्रति और ज्यादा जागरूक और देश के प्रति प्रेम भाव बढ़ाने के तरीका छे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जे सब जनी जना जाने छी कि युवा के ऊपर कितना भार छे देश का, यही कारण ये अत्यंत जरूरी छे कि युवा अंदर से देशभक्ति, देश प्रेम, सदाचार, सुविचार, स्वचरित्र के निर्माण हो। एक नींव छे नीक चरित्र के, बचपन से ही प्राथमिक स्कूल से देश के प्रति लगाव, सुचरित्र के निर्माण होबाक जरूरी छे। ये तखने संभव छे जखन शिक्षा में ये सब चीज शामिल छे। शिक्षा में देश के प्रति लगाव और सांस्कृतिक चीज रहना जरूरी छे। जेना कहा गए छे युवा शक्ति राष्ट्रक शक्ति, मुद्दा ये शक्ति तखने सार्थक होई छे जखन एकर आधार चरित्र और देशभक्ति छे। अंत में आहां सब के जागरूक और उज्जवल चरित्र ही भारत के भविष्य को चमकाएब।
1: बहुत नीक कहा।
2: जरूरी छे कि घर से ही शिक्षा मिलवा, घर से शिक्षा।
1: घर से शिक्षा भेटे। बहुत उचित गप कहलो। वास्तव में चरित्र के जो विकास हो घर से हो कहलो गेल अछि कि अहाँ के माय जे होइ छै माँ और पिता बच्चा के अच्छे से अहाँ के प्रथम गुरु होइ छथि, पहिल पाठशाला हो तो बच्चा के अच्छे से जे घर में माय बाप से संस्कार भेटे और जखन विद्यालय जाइ छी तो ओहिठमा शिक्षक गण से जे प्रेरणा भेटे शिक्षा भेटे इएह जीवन में समग्र विकास का कारण बनी है। और चारित्रिक निर्माण और देशभक्ति की भावना ऐसे प्रखर होइया तो अहाँ सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि अहाँ सब छे से बहुत नीक जानकारी दिलो।
3: एखन हम सब अहाँ का वाध्वनांकन पर आधारित परिचर्चा सुनने छलहुँ हँ। विषय छल युवाओं में चरित्र और देशभक्ति की भावना का विकास कैसे हो। प्रतिभागी लोकन छले थे पंखुरी, सिदीक्षा प्रिया, आर्या झा आ दीपशिखा बारीक।
4: संचालक छला गोपीचंद झा, प्रस्तुतकर्ता असद दाव।
3: बड़ नीक जानकारी भेटल, हिनका लोकन के धन्यवाद दै छियनि। आ देखियो विजय भाई, सहकारिता जे अछि ओ ग्रामीण विकास का एकटा समग्र और समावेशी मॉडल अछि जेकर उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से जमीनी स्तर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और सामाजिक सशक्तिकरण आननाइ अछि। ई मॉडल व्यक्तिगत मुनाफा के बजाय सामूहिक विकास और साझा स्वामित्व पर जोर देते अछि।
4: देखियो गोपी भाई, अपने निगप कहलिए ई जे सहकारिता से समृद्धि आ ग्रामीण विकास जे अछि ओ एकटा समग्र आ आधुनिक मॉडल थी जेकर उद्देश्य गाम के आत्मनिर्भर बननाय अछि। ई मॉडल व्यक्तिगत लाभ के जगह सामूहिक उद्यम पर जोर दैत अछि, जाहिसँ छोट किसान, पशुपालन

0: आ ग्रामीण कारीगर के एकटा मजबूत आर्थिक मंच मिलत है। ग्रामीण विकास के एहि नव मॉडलक मुख्य रूपरेखा आ कार्यप्रणाली जे अछि ओ एहि प्रकार अछि जेना कि पैक्स के आधुनिकीकरण आ विस्तार। तो गोपी भाई, प्राथमिक कृषि साख समिति के गाम गाम धरि पहुँचायल जा रहल अछि, दोसर भेल डिजिटलीकरण।
1: अच्छा, एहि मॉडल के अंतर्गत अहाँके जतेक पंचायत यऽ, पंचायत स्तर पर एकटा पैक्स के निर्माण कयल जा रहल यऽ। ई समिति अहाँके मात्र कृषि ऋण तक सीमित नहि अछि, या बहुउद्देशीय भऽ गेल बुझलहुँ। एहिमे अतिरिक्त सेवाएँ के माध्यम से गाँव गाँव में LPG के वितरण, जन औषधि केंद्र, उर्वरक वितरण और माइक्रो ATM जेहन सुविधा सेहो देल जा रहल यऽ। आ सहकारिता से समृद्धि और राष्ट्रीय सहकारिता नीति जे अछि, सहकारिता के एकटा नव पहचान और गति देबे के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति लागू कयल गेल है। एकर मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीक, नवाचार और युवा लोकन के भागीदारी के जरिए सहकारिता संस्था के प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार केने अछि।
0: वही भाई देखियो, दोसर में अछि अहाँके डिजिटलीकरण। डिजिटलीकरण जे अछि पैक्स के कंप्यूटराइजेशन ओकरा राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल से जोड़ल जा रहल अछि।
1: अच्छा अच्छा।
0: एक तो और भेल अहाँके ग्रामीण भंडारण योजना। एहिमे छोट छिन किसान भाई जे छथि लोकन अपन उपज के सही मूल्य देबाक लेल गामे में गोदाम आ कोल्ड स्टोरेज ई कार्ड बनायल जा रहल अछि, जाहिसँ किसान भाई लोकन के अपन फसिल औने पौने दाम पर बेचबाक मजबूरी से मुक्ति मिलत है।
1: अच्छा।
0: एक तो और भेल अहाँके महिला सशक्तिकरण, एहि मॉडलक केंद्र बिंदु।
1: अच्छा, महिला सशक्तिकरण सेहो होइए
0: ग्रामीण महिला लोकन के। और भेल अहाँके तकनीकी आ वित्तीय समावेशन। तो सूक्ष्म ATM आ बैंक मित्र अहाँ कहबे कयलहुँ ई बात, तो ग्राम के हर कोन धरि बैंकिंग आ ऋण सुविधा पहुँचबाक लेल सहकारी बैंक आ पैक्सक उपयोग कयल जा रहल।
1: अच्छा, तो देखियो जँ ई सब जे गप को ध्यान में रखब तो सहकारिता के माध्यम से गामक सर्वांगीण विकास होयत आ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होयत। आ अही के संगे आजुक जे गाम घर के समय अछि ओ सम्पन्न भ रहल अछि। आ हम सब खेती पथारी के कार्यक्रम खेती गृहस्थी दिस चली, तो खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई लोकन के हार्दिक स्वागत अछि। तो विजय भाई, केना की खेती बाड़ी भ रहल छै से कहियो।
0: देखियो गोपी भाई, सबसे पहले तो हमरा लोकन खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई लोकन के स्वागत करै छियनि। गोपी भाई, अपना सब आइ जे छै से तिलक आधुनिक खेती कोना कयल जाय एहि विषय पर गप सब करब।
1: देखियो विजय भाई, अपने सब अहाँके अनाजक मामले में, गहूम के मामले में, चौर के मामले में तो आत्मनिर्भर भ गेलहुँ हँ, लेकिन दलहन और तेलहन ई फसिल जे यऽ एहि के मामले में एखन तक स्वावलम्बी नहि भेलहुँ। और एहि के कारण छै से अहाँके बाहर से एकरा आयात करय पड़ैए। आज जे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा सरकार के पर खर्च होइए, तो तेलहन फसिल के छै से अहाँके बेसी से बेसी उत्पादन है। एहि विषय पर अहाँके छै से हमसब चर्चा करब। आ भारत सरकार एहि पर विशेष ध्यान दऽ रहल यऽ, जे तेलहन फसिल के खेती करैए ओकरा सरकार छै से विशेष सुविधा, विशेष सब्सिडी दैए। तऽ तिल के आधुनिक खेती में उन्नत किस्मक चयन, उचित जल निकासी वाला खेत, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और वैज्ञानिक पटौनी जेना ड्रिप पटौनी जो होइए फुहारा के उपयोग शामिल अछि, एहिसे उत्पादन और तेलक गुणवत्ता दुनू में भारी वृद्धि होइए। तिलक जे उन्नत किस्म अछि ओ अछि आधुनिक और बेसी उपज दे वाला किस्म के चयन करी, जेना GT1, GT2, TC25, RT46 आ स्थानीय क्षेत्रक लेल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित प्रमाणित बिया। आ खेतक तैयारी अब बौ कोना करी विजय भाई?
0: देखियो गोपी भाई, सबसे पहले तो हम ई कहब अपने के ई तिल जे अछि ओ आधुनिक खेती के जे अछि से ओ कम लागत आ कम पानी में बेसी मुनाफा कमाय वाला एकटा सबसे नीक नकदी फसल। आधुनिक तरीका एकरा अपना कऽ आ उन्नत बीजक प्रयोग कऽ कऽ अपना सब तिल सँ प्रति एकड़ 3 से 4 क्विंटल धरि उपज आसानी से प्राप्त कर।
1: अच्छा अच्छा।
0: एकरा उन्नत पैदावारक लेल आधुनिक कृषि विज्ञान द्वारा विभिन्न तरीका से सुझाव देल जाइत अछि, जेना कि उन्नत किस्म अपने कहलिए, एहिमे नीक पैदावारक लेल अपन क्षेत्रक जलवायु के अनुसार प्रमाणित आ संकर किस्मक चयन करी। प्रमुख उन्नत किस्म में गुजरात तिल 1, 2, 3, प्रताप, RT46, RT LC आदि शामिल अछि, जे रोगक प्रति सहनशील होइत अछि। खेतक तैयारी आ बाउ तऽ एकर जे छै माटि आ जलवायु, तिलक लेल हल्लुक बुआई, बलुई, दोमट या नीक जल निकासी वाला माटि सबसे उपयुक्त होइत अछि। जल भराव वाला भूमि में ई फसल नष्ट भऽ जाइत अछि। एकर जे बौगक समय अछि ओ

0: खरीफ मौसम में बुआई के लेल जुताई जुलाई के महीना सबसे उत्तम मानल जाए।
1: जुलाई के पहिल मास सप्ताह से लेकर अंतिम सप्ताह तक हम सब कह सके छी। आ बिया दल दूरी जे राखी ओ एक हेक्टेयर के लेल 506 किलो बिया पर्याप्त है, बुझलिए, एक हेक्टेयर के लिए।
0: एकर दूरी जे कतार से कतार के दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधा से पौधा के दूरी 10 सेंटीमीटर
1: 10 से 15 सेंटीमीटर। आ उर्वरक आ पोषण प्रबंधन में खाद खेतक तैयारी के लिए नीक जे सरल गोबरक खाद है वो खेत में मिला दी। आ उर्वरक या माटि परीक्षणक आधार पर नाइट्रोजन फास्फोरस आ पोटासक संतुलित मात्रा में प्रयोग करी। आ पटौनी और खरपात नियंत्रण में तिल में बहुत कम जलक आवश्यकता हो आधुनिक तरीका जना ड्रिप पटौनी है उपयोग कर जल के बचत कर सके छी और पैदावार बढ़ा सके छी। आ बाव के 15-20 दिन के बाद पहल हाथ से कमुनी करी। आ खर पातक नियंत्रण के लिए पेंडी मेथालिन का प्रयोग करी, बुझलहुँ, तखन ऐसे खर पात के नियंत्रण हैत, फसिल के छै से अहाँ के पौष्टिकता भेटत, फसिल के विकास निक जेना हैत, ओना ही जीवनक विकास के लिए कि गीतनाद एकदम हेबा के चाही।
0: अवश्य के ना,
1: तो किया ने किसान भाई को हम सब एक गीतनाद
0: सुनिए, हमारे ममता ठाकुर के स्वर में ये भगवती गीत
1: सुनल जाए।

0: आदिशक्ति तू माया। वास्तव में आदिशक्ति माँ भगवती का जे माया है, जे आशीर्वाद उनकर जे आशीर्वाद है, अही पर संपूर्ण संसार चल रहा है। आ हुनक आशीर्वाद को हम सब छे से अहाँ का अपेक्षित अपेक्षा करे छी कि हुनक आशीर्वाद सबको भेटा। आ देखियो विजय भाई, खेती गृहस्थी में अपने सब जे खेती बाड़ी करे छी तो संग संग माल जाल का पोषण सेहो करे छी। आ माल जाल का पोषण जे है अहाँ का, हाँ ओहिमे जे अहाँ का दूध के उत्पादन होइया तो खेती बाड़ी में मान लिया कि किछ अगर घाटो भ गेल तो ओहिसे पूरा भ गेल। तब गर्मी के मास में माल जाल के पोषण केना कयल जाए, कोना हुनकर देखभाल कयल जाए, कोना हुनक आहार विहार का ध्यान देल जाए, ए विषय पर हम सब एक गोट भेंटवार्ता सुनै छी। गर्मी में पशुओं की देखभाल, भेंटवार्ताकार छथि संजय यादव जे अनुभवी किसान छथि आ भेंट कऽ रहल छथि
1: देवनारायण यादव,
0: तो सुनी हम सब ई भेंटवार्ता।
2: कार्यक्रम खेती गृहस्थी के अंतर्गत आई हम आयल छी कबीरचक गाम। ई गाम सदर प्रखंड के अंतर्गत आबत है। एतो के किसान के जो देख रहल छी बहुत ही कर्मठ छथि, मेहनती छथि आ जुझारू सेहो छथि। तो आओ वही क्रम में एतो के किसान से गपशप करी। श्रीमान अपने के की नाम भेल?
3: संजय कुमार यादव।
2: संजय कुमार यादव जी अपने की करे छी?
3: अपने माल जाल रखे छी, खेती गृहस्थी करे छी।
2: वाह, बहुत सुंदर काज करे छी संजय जी। अच्छा संजय जी, भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती के आ पशु के

0: दोनों के एक दूसरे के पूरक मानल गेलै। अहाँ के जे देख रहल छी बथान पर जे बहुत ही नीक नीक नस्ल के जो छे अहाँ गाय सेहो पालने छी, तो ई गर्मी मास में संजय जी अपने माल मवेशी के कोना देख रेख करे छी?
1: देखियो गर्मी मास में जे छे से 7 से 8 बजे तक माल जाल के सबके अंडर, ओकरा बाद में एक बेर स्नान कर दिलो सवेरे में, और ओकरा बाद जे छे से पंखा सेलिंग से लगा देने छे, और खान पान बढ़िया रखे छे।
0: खान पान में अहाँ की सब दे छे?
1: खान पान में वह भूसा छे, चोकर दे छे, गेहूँ के दर्रा दे छे, मकई के दर्रा देलो ठंडा के लिए।
0: अच्छा संजय जी, तो बहुत ही खान पान के सेहो ध्यान रखे छे, संग संग जो छे गर्मी मास में जे देखे रहल छे जे बाहर नीक जका सावधानी सेहो रखने छे। तो संजय जी, ई जो माल जाल जो अपने जो रखने छे, तो एकरा लेल जो छे देखे छे कखनो काल के माल मवेशी के जे जना आदमी के देखे छे कि कखनो काल के मन अस्वस्थ भ जाय छे, तो मान लिया जे माल माल जाल के कोनो तरह जे मान ले मन अस्वस्थ भ गेल, तो ओकरा पहचान अहाँ केना करे छे?
1: माल जाल जे से जुगाली केना जे से कम कर देलक, मन अस्वस्थ रहल, मन उगर देख लिए सुस्त टाइप के, भोजन नहीं केलक ठीक से,
0: तो माने ये सब लक्षण देख के हाँ बुझ जाए तबियत जो छे मन अस्वस्थ छे। अच्छा, तो आई लेल जो छे अपने उपचार जो छे अपने करे छे या कोई पशु चिकित्सक से सेहो सलाह ले छे?
1: पशु चिकित्सक से सलाह ले छे।
0: अच्छा, पशु चिकित्सक से सलाह ले लो आ जे निर्देश देलक ओकरा अनुसार अपने जो छे दवा दारू कैलो। अच्छा, कखनो काल के जे देखे छे कि थनैला रोग हो जाए छे, तो थनैला रोग भेला पर जो छे संजय जी जे दूध दे दूध माल जाल के दूध पर सेहो असर पड़े छे, तो थनैला रोग जो होय छे तो एकरा लेल जो छे की सब अहाँ करे छे बचाव के लेल? जो छे
1: ओहि सब बचाव के लेल पहले घरेलू उपचार करे छी, जेना धनिया के पत्ता होय छे उसब दे छी सुसुम पानी से, ओकरा थन के धोलहुँ, ओकरा बाद जे छे से साफ सुथरा में रखलहुँ, आ नहीं ओकर बाद भेल तो डॉक्टर से परामर्श ले लो।
0: हाँ, डॉक्टर से परामर्श सेहो ले लो। अच्छा, कखनो काल का देखे छे माल मवेशी के खुरहा रोग भ जाए छे, मुँह पक्का रोग भ जाए छे, तो एकरा लेल तो सेहो माने सावधानी कहबी तो छे सतर्कता गेल आ दुर्घटना भेल, तो एहि लेल जो छे अहाँ तो सावधानी तो देखे रहल छी, साफ सफाई बहुत जरूरी छे, ओनाहियो माल मवेशी जतय तो स्थान रहैत अछि ओतय के जो स्थान अछि स्वच्छ रहबाक चाही, वातावरण जो छे जे हवादार हेबाक चाही, पशु के जतय तो बान्हल जाइ छै ओ स्थान जो है हवादार हेबाक चाही। तो अपने जो छे खुरहा रोग आ मुँहपका लेल जे छे सेहो एकटा बीमारी छे, एहि लेल बचाव लेल सेहो अहाँ की करै छी?
1: एहिसे एहि के लेल तऽ हम पहिले घरेलू उपचार केलहुँ, नीम के छाल गरम पानी में उबाइल कऽ कऽ ओकरा सुबह शाम धोलहुँ बढ़िया से, ओकरा बाद जे है से फिनाइल से सेहो धोलहुँ, ओकरा बाद फिर डॉक्टर से परामर्श लेलहुँ।
0: बहुत ही नीक विचार अछि जे अपन सबसे पहले तो अपने घरेलू उपचार केलहुँ, आ घरेलू उपचार कऽ के जो छै तहन माल मवेशी के सेहो जो छै अपने जे एकरा दिशा निर्देश लऽ कऽ तहन माने इलाज एकरा कराबै छियै। अच्छा संजय जी, अपने जो छै जे देखै छी जे अखनका समय में जो छै खान पान में जे अहाँ जो कहबे कयलहुँ हैं संग संग छै हरा चारा के सेहो व्यवस्था अहाँ करैत होबै, हरा चारा के व्यवस्था केना की करै छियै, अपने लाबै छियै या कोई माने बाधवन में चढ़ाबै छी?
1: नहीं नहीं, काटि के अपने से बाग कयलहुँ, सुजान कयलहुँ, जनेर कयलहुँ, ओकरा बाद काटि के लेलहुँ, सानी में खियेलहुँ।
0: सानी में मिला के खिलेलहुँ, तो ताहि दुआरे अहाँके देख रहल छी जे माल जाल बहुत ही नीक मतलब देख में आ रहल छै, माने खान पान पर विशेष रूप से अहाँ ध्यान रखै छी। संजय जी, अपने से माल मवेशी विषय पर गप शप कऽ के बहुत नीक लागल, एहि लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: हाँ विजय भाई, एखन हमसब एगोट भेंटवार्ता सुनै छलहुँ हँ, भेंटवार्ताकार छलै तऽ संजय यादव आ भेंट कऽ रहल छलै तऽ देवनारायण यादव, विषय छल गर्मी में पशुओं की देखभाल। वास्तव में गर्मी मास में माल जाल के छै से अहाँ के उन दाना पानी पर आहार विहार पर बेसी ध्यान देबऽ पड़ैया, आ हुनका रोग से अथी से रौद से बचा कर के देखै छी कते डकहा रौद अछि, कते गर्मी पड़ैया तो रौद से बचा कर राखऽ पड़ैया,
3: मालो जाल के रोग भऽ जाइ छै।
2: हाँ, आ बेसी से बेसी हुनका जल छै से एहि समय देबाक चाही, हाँ, ताकि छै से हुनका गर्मी जो तापमान है वो कम हुए। आ देखियो हमरा सबके लेल अहाँ के हम सब किसान छी, आ मध्यावर्ती जो मौसम पूर्वानुमान है

0: के आधार पर हमसब जँ खेतीबाड़ी करै छी तऽ बेसीसँ बेसी लाभ होइत अछि। तऽ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर भारत मौसम विज्ञान विभाग दिससँ जारी 13 जून सँ 17 जून 2026 धरि मौसम पूर्वानुमानक अनुसार
1: बिहारमे मानसूनक प्रवेश आबि गेल अछि। एकर प्रभावसँ पूर्वानुमान अवधिक अधिकांश समय आसमानमे हल्लुकसँ मध्यम बादल छायल रहि सकैत अछि। ई अहाँके 15 जून के बाद मेघ गर्जन वज्रपात एवं तेज झोंकेदार हवा के संग उत्तर बिहारक जिला में कतौ कतौ ठाम पर हल्लुक बरखा हेबाक संभावना अछि।
0: अच्छा,
1: 1 सँ 2 स्थान पर मध्यम बरखा भऽ सकैत अछि। कमजोर सिस्टम के कारण एहि क्षेत्र में नीक बरखा के संभावना नहि अछि।
0: अच्छा, अधिकांश जिला में अधिकतम तापमान 30 सँ 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना अछि, जखन कि बेगूसराय आ सारण जिला में ई अहाँके 34 सँ 36 डिग्री सेल्सियस पहुँच सकै
1: आ न्यूनतम तापमान 22 सँ 26 डिग्री सी के बीच रहबाक संभावना अछि। सुबह में सापेक्षिक आर्द्रता 75 सँ 80% आ दुपहरिया में सापेक्षिक आर्द्रता 30 सँ 35% रहबाक अनुमान अछि।
0: आ हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा सँ 12 सँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार सँ चलबाक संभावना अछि।
1: गुरु भाई, ई छल आजुक मौसम पूर्वानुमान।
0: आशा अछि कि एहि मौसम पूर्वानुमानक आधार पर किसान भाई खेतीबाड़ी करता आ बेसी से बेसी उत्पादन करता। आ देखियो, समसामयिक सुझाव दिया, ओहिमे तीमन तरकारी में जराम तोरई भेल, सजमनि भेल, खीरा भेल, एकर फसिल में कमुनी कऽ ली आ खौर पात के नियंत्रण कऽ ली। पात खाय वाला जे अहाँके कीड़ा मकोड़ा अछि आ फल छेदक कीट के नियमित निगरानी करी। प्रकोप जब बढ़ जाइया तो डाइमेथोएट 30 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर जल के दर से 1 मिलीलीटर हेबाक चाहिए अहाँ के दवाई आ 1 लीटर जल को मिलाकर तखन छिड़काव करी। तो ई सब जे गप को ध्यान में रखब तो नीक उपजा है। ओनाही छे से अहाँ के जे गीतनाद हम सब सुनी आ गीतनाद किसान भाई के सुनाबी। हाँ,
1: तो सुनी हमरा लोकनिक गीत।
0: हाँ, सुनल जाए।
1: अरविंद कुमार, ओम प्रकाश।

0: हाँ एखन हमसब एगोट गीत सुनने छलहुँ आर गंगा पार जमुना, अरविंद कुमार झा आ ओम प्रकाश सिंह हुनकर संगी साथी के स्वर में। आ देखियो देवू कहे अहाँक विजय भाई, अपने सब तीमन तरकारी पर गप करे छलहुँ हैं, तो ओनाही धान के जे मध्यम अवधि वाला किस्म है, जना राजेंद्र नीलम, राजेंद्र श्वेता, राजेंद्र भगवती, राजेंद्र सरस्वती आ सुगंधित किस्म जना है, ओकर छै से अहाँक बिखित बिचरा बियास्थली में गिराबे के काज करी। अही के संगे खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय सम्पन्न हेबाक अछि। खेती गृहस्थी कार्यक्रम से किसान भाई सब हम सब आगे ली। नमस्कार विजय भाई।
1: नमस्कार गोपी भाई।

यथा खेती गृहस्थी प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी प्रखंडों में आज से 3 दिवसीय सहयोग सहजन कल्याण शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैमूर और सिवान के शिविरों में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले 22 जून तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम सेवा पर लगाया प्रतिबंध। मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेलवे कर रहा है 30 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की 12 वर्ष पूरे होने पर आज से प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों में 3 दिवसीय प्रखंड सहयोग सहजन कल्याण शिविर की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैमूर और सिवान जिले में आयोजित शिविर में शामिल हुए। कैमूर के भगवानपुर प्रखंड स्थित पहड़िया पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते एक महीने में सहयोग शिविर के माध्यम से 3,03,678 प्राप्त हुए आवेदनों में से 2,61,618 आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं, जो कुल प्राप्त आवेदनों का 90% है।
1: साथियों, हम लोगों ने शिविर कार्यक्रम शुरुआत किया है और लगभग एक महीना पूर्ण वाला है 1-2 दिनों के अंदर, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 3,03,678 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ। 2,61,628 लोगों का आवेदन निष्पादित किया गया। कार्यक्रम का मकसद है जनता से संवाद, जनता के समस्या का हल करना।
0: उन्होंने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से लोगों की शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है और निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।
1: जनता जो लगातार किसी भी तरह के परेशानी को झेल रहा हो, उन समस्या को समाप्त करना है। और इसके जो कानून है बड़ा स्पष्ट है साथियों, 10 दिन के अंदर यदि कोई आदेश पारित नहीं हुआ तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से वैसे पदाधिकारी को पहला नोटिस दिया जाता है। दूसरा नोटिस जब 20 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, और तीसरा

0: कानून है बड़ा स्पष्ट है साथियों, 10 दिन के अंदर यदि कोई आदेश पारित नहीं हुआ तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से वैसे पदाधिकारी को पहला नोटिस दिया जाता है, दूसरा नोटिस जब 20 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, और तीसरा नोटिस 25 दिन के बाद, और 30 दिन तक यदि किसी पदाधिकारी ने आदेश नहीं किया तो 31वें दिन वह स्वतः निलंबित कर दिया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे बिहार में रहकर अपराध करते हैं तो इसे चुनौती माना जाएगा और 48 घंटे के भीतर जवाब दिया जाएगा।
0: कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है, और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा, और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी।
1: इससे पहले उन्होंने मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि और विकास की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 196 करोड़ रुपए की लागत से 60 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मां मुंडेश्वरी धाम में रोपवे निर्माण की दिशा में जल्द पहल की जाएगी, साथ ही मंदिर परिसर के विकास और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को मां मुंडेश्वरी धाम से जोड़ने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आज सिवान के पचरुखी प्रखंड के पपौर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भी शामिल हुए। श्री चौधरी ने यहां 180 करोड़ रुपए की लागत वाली 38 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही योजनाओं के लिए आवेदन भी दिया। एक रिपोर्ट।
2: पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 25 विभागों के अलग अलग काउंटर लगाए गए, जहां आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया। जहानाबाद में जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने मोदनगंज प्रखंड के जयतीपुर कुरुआ सहित विभिन्न पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविरों का निरीक्षण कर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन और पोर्टल पर अपलोड की स्थिति की समीक्षा की और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इधर सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड स्थित बेला सिंगार मोती पंचायत में जिलाधिकारी सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक शरद आरएस ने सहयोग शिविर के दौरान पात्र लाभुकों के बीच मौके पर ही जॉब कार्ड का वितरण किया। वहीं अरवल जिले के प्रभारी मंत्री दीपक प्रकाश ने सदर प्रखंड के सोनबरसा पंचायत में आयोजित शिविर के दौरान लोगों से संवाद किया और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शेखपुरा जिले के पंचायतों में आयोजित विभिन्न सहयोग शिविरों में प्रभारी मंत्री श्वेता गुप्ता, जिलाधिकारी शेखर आनंद तथा पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों ने भाग लिया। दूसरी तरफ सारण में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविरों में लोगों की समस्याएं सुनी तथा इनके त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। उधर भागलपुर के अंबा पंचायत सहयोग शिविर में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने लोगों की शिकायतें सुनी और शिविर में प्राप्त अधिकांश आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया। समाचार कक्ष से निधिश्री।
1: 18 जून तक चलने वाले इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, ई-केवाईसी तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम पर 30 जून तक संदेशों को संपादित करने की सुविधा भी बंद रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पूर्व मध्य रेल कल होने वाली मद निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्र और पटना जंक्शन सहित विभिन्न स्टेशनों से 30 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा। एडीजी रेल डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने

आया कि परीक्षा में लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षार्थियों के आवागमन में सुविधा के लिए आज और कल विभिन्न रूटों पर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। आज पाटलिपुत्र और पटना से किशनगंज, नरकटियागंज, अररिया, नवगछिया तथा भभुआ के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल भी पटना, गया, बक्सर, कियूल, राजगीर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, औरंगाबाद, हाजीपुर तथा नौगछिया सहित विभिन्न स्टेशनों से 26 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: AIR at 90.
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देर शाम 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचेंगे। श्री चौहान इस दौरान कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे कल पटना के नौबतपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान वे किसानों से संवाद करेंगे तथा कृषि भूमि संरक्षण, टिकाऊ खेती और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में तेजी से और समग्र विकास हुआ है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ी है और विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर खुले हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। वहीं मेट्रो रेल का नेटवर्क लगभग 250 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 1,200 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनों से अधिक हो गई है। पश्चिम चंपारण के बेतिया अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर पर कार्यरत क्लर्क राजकुमार मिश्रा को निगरानी विभाग की टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी DSP श्याम बाबू प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार क्लर्क ने शिकायतकर्ता से जमीन की जमाबंदी अनलॉक करने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जिसके सत्यापन के बाद यह कार्रवाई की गई। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा जमुई और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है।

0: हालांकि मॉनसून की सक्रियता में कमी आने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले के एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
1: राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के एक या दो स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष भाग शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 331 लीटर शराब की एक बड़ी खेप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड के कैदी गाँव में कृषि उद्यमी सेवा केंद्र का शुभारम्भ किया गया। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को खाद, बीज, कृषि संसाधन और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले में टीबी उन्मूलन अभियान को गति देने के लिए सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को कफ अगेंस्ट टीबी ऐप के उपयोग का 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस डिजिटल ऐप की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान और स्क्रीनिंग आसान होगी, जिससे समय पर उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी प्रखंडों में आज से 3 दिवसीय सहयोग सहजन कल्याण शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैमूर और सिवान के शिविरों में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले 22 जून तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम सेवा पर लगाया प्रतिबंध। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेलवे कर रहा है 30 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: AIR at 90.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गया जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
2: गया जिले के खिजरसराय में बीते दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रौद्योगिकी केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने गया जी इस्लामपुर खिजरसराय पथ से देवगांव स्थित टेक्नोलॉजी सेंटर तक सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का भी शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी केंद्र क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गया के प्रसिद्ध पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट के शिल्पकारों को बधाई देते हुए कहा कि GI टैग मिलने से बिहार की पारंपरिक कला और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की लोक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा परंपरा

0: है हमारी अमूल्य धरोहर है तथा जीआई टैग से इन उत्पादों को कानूनी संरक्षण के साथ वैश्विक बाजार में नई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। गया जी के शुभम कुमार ने जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया। शुभम ने आईआईटी दिल्ली जोन के छात्र हैं। उन्होंने कुल 360 में से 330 अंक प्राप्त किए हैं। इससे पहले शुभम ने जेईई मेन 2026 में दोनों सेशन में भी 100% स्कोर किया था। शुभम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के लिए उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी और रोजाना 8 घंटे अध्ययन करते थे। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम और निरंतर मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित युवा संगम के फेज 6 कार्यक्रम के तहत पंजाब से आए युवाओं के प्रतिनिधि मंडल ने गया की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत से परिचय प्राप्त किया। प्रतिनिधि मंडल ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर परिसर तथा विष्णुपद मंदिर का भ्रमण किया और बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं की जानकारी ली। इधर बीते दिनों संसदीय राजभाषा समिति की द्वितीय उप समिति के 10 सांसदों के एक शिष्टमंडल ने महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जनजातीय गरिमा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जनजातीय समुदाय के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तथा वनाधिकार अधिनियम के तहत भूमि के पट्टे वितरित किए गए। अपने संबोधन में श्री मांझी ने कहा कि आदिवासी समाज देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिछले दिनों म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग एक दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर तथा बकरौर स्थित सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल भी मौजूद रहा। भारत सरकार की ज्ञान भारतम परियोजना के अंतर्गत प्राचीन ज्ञान संपदा के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी तथा नव नालंदा विहार की विशेषज्ञ टीम ने गया जी स्थित एक निजी पुस्तकालय में संरक्षित दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया। इस दौरान लगभग 700 वर्ष पुराने कई महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथ मिले। विशेषज्ञों ने इन पांडुलिपियों को इतिहास, संस्कृति और शोध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गया वन परमंडल द्वारा ब्रह्म वन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भाग लिया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का विस्तार चर्चा की गई। श्री कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण, जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों की सराहना करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा जन जागरूकता पर बल दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे गया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म चोरी चोरी का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल थे हसरत जयपुरी के और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म दो बदन का यह गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में और बोल हैं शकील बदायूनी के और संगीत निर्देशन रवि का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म प्रेम रतन धन पायो का यह गीत सुनिए, अन्वेषा विनीत सिंह एवं हर्षदीप कौर की आवाज में। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का है।

अब सुनिए, प्यासा फिल्म का यह गीत उदित नारायण की आवाज में, बोल हैं फैयाज अनवर के और संगीत निर्देशन भी फैयाज अनवर का है।

0: अभी आप सुन रहे थे
1: फिल्म
0: प्यासा का यह गीत उदित नारायण की आवाज़ में।
1: बोल थे फयाज अनवर के और संगीत निर्देशन भी फयाज अनवर का था। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार बंधु, स्वागत इच अपने सब गोटे के सिंगारहारक यही अंक में। आजुक अंक लक अहाँक रेडियो सेटक संग संग न्यूज ऑन AIR ऐपक माध्यम से अहाँक मोबाइल फोन पर सेहो आबि गेल छी। अहाँक साहित्यिक सहयात्री हम सोनू। आधा घंटाक एक कार्यक्रमक रूपरेखा तो अहाँ सबके बुझले रहते अछि। एहि साहित्यिक यात्रा में हम सब गीत सुनै छी, कविता सेहो हम अहाँ सबके सुनबैत छी, अपन किछु शब्द पर सेहो गपशप करैत छी। आ सबसँ प्रमुख बात तऽ ई जे हम अपने लोकनिसँ एहि यात्रा में किछु साहित्यिक गपशप करैत छी। एकटा बात आर अछि, जखन हमसब सिंगरहार में साहित्यिक गपशप करैत छी

तो मात्र गपसप निकल छी। एक गपक क्रम में साहित्यक बहुत रास जनतब सेहो लेत छी। खास कको जो साहित्यक छात्र छात्रा लोकन सुनित छथि तो हुनका लोकन के अपन जे विषय वस्तु छन तकर ज्ञान सेहो बढ़ित छन आ साहित्यिक अभिरुचि तो जगते छन। तें हम सब से इस साहित्यिक गपशप करित छी। से गपशप तो आइयो करबे करब, मुदा ऐसा पहिने तो सब गोटे स्वीकार करू ने हमर नमस्कार। बंधु लोकन, कोनो साहित्यिक विकास वा भाषा परिमर्जन आ आम जन जागरण में पत्र पत्रिका योगदान महत्वपूर्ण होइत अछि। से ई कोनो आइए नहीं, एकर योगदान ऐतिहासिक आ युगांतकारी रहल अछि। साहित्य आ पत्रकारिता बुझू तो दुनू एक दोसराक पूरक जका काज करैत अछि। साहित्य सर्जक लोकनि अपन साहित्य सृजन करैत छथि तँ पत्र पत्रिका साहित्यक विमर्श के आम जन धरि पहुँचेबाक काज करैत अछि। से ई कोनो एकटा भाषा साहित्यक गप नहि अछि। सब भाषा साहित्यक विकास में पत्र पत्रिकेक महत्वपूर्ण भूमिका रहित अछि। से आन भाषा साहित्यक संग संग मैथिली भाषा साहित्यक विकास में सेहो पत्र पत्रिकाक स्थान सर्वोपरि रहल अछि। हालांकि मैथिली में पत्र पत्रिकाक प्रकाशन आम भाषा साहित्यक अपेक्षा कने विलम्ब सँ अवश्य भेल, मुदा जहिया सँ आरंभ भेल तहिया सँ आइ धरि ई अपन मजगूतीक संग अपन काज निरंतर अनवरत कऽ रहल अछि। असल में मैथिली में पत्र पत्रिकाक प्रकाशन आन भाषाक प्रकाशनक देखा देखी आरंभ भेल छल। सबसँ पैघ आ महत्वपूर्ण गप तँ ई अछि जे मैथिली पत्रकारिताक आरंभ मिथिलासँ नहि भेल, अपितु मिथिलासँ सुदूर स्थान जयपुरमे एकर आरंभ भेल छल। ओकर की नाम छल, कहिया आरंभ भेल, ओकर संपादक के छलाह, इस सब पर हम सब गपशप करब, मुदा आगू जे गप करब तै लेल आवश्यक अछि जे हमरा लोकनि कने अपन चित्त के स्थिर कऽ ली। आ से चित्त के स्थिर करबाक सबसँ नीक माध्यम होइत अछि संगीत सुनब। आउ ने एकटा विद्यापति गीत पहिले सुन लै छी आ फेर गप हेतैक।

नाथ झा किरण से विद्यापति गीत एखन हम सब सुन रहा छलो हैं। आ उससे पहिने हम सब गप कर रहल छलो हैं मैथिली पहिल पत्रक विषय में, जेना कि पहिने कहलौं जे ई पहिल जे पत्र छल से जयपुर से निकलल 1905 ईस्वी में। आ एकर संपादक छला विद्यावाचस्पति मधुसूदन झा आ पंडित चंद्रकांत झा। इनका दुनुक संपादन में पहिल बेर मैथिली के अपन पत्र भेटले मैथिल हित साधन नाम से। इनके दुनुक शत प्रयास से मैथिली साधन मासिक प्रकाशन आरंभ भेल छल, किंतु ई अधिक दिन धरि नहीं चल सकल। आ एकर बाद लगले बाद काशी से महामहो मुरलीधर झाक संपादन में 1905 ईस्वी में

एकटा दोसर पत्रक प्रकाशन सेहो आरंभ भेल। सबसे बेसी दिन धरि यह पत्र चलल, लगभग 26 वर्ष धरि प्रकाशित होइत रहल। एकर बाद जे सबसे बेसी चर्चित पत्रिका रहल ओ अछि पंडित विष्णुकांत झा शास्त्रीक संपादन में वर्ष 1905 ईस्वी में आरंभ भेल पत्रिका मिथिला मिहिर। ओना इहो पत्रिका आरंभ मासिके रूप में भेल छल, किंतु बाद में आबिकऽ एकर प्रकाशन साप्ताहिक रूपे हुअ लागल आ ई मैथिली साहित्य जगत में वा कहीं जे आम जन में सेहो अपन बेस ख्याति अर्जित कऽ चुकल छल। बेस आर हम सब गपशप करब, मुदा जखन साहित्यिक गपशप करै छी, साहित्यिक कार्यक्रम लऽ कऽ अबैत छी, तखन कविता कथा सुनब सेहो आवश्यक जेना भऽ जाइत अछि। आओ एकटा काव्य पाठ सुनैत छी निक्की प्रियदर्शनीसँ।

कविताक शीर्षक अछि काठक समान। कुर्सी सँ एकटा लगाव ठीक ओहिना जेना हो हमर प्रेमी अथवा पूर्व जन्मक कोनो संबंध जे समय अभाव में भ गेल छल बीचहि बाट में समाप्त। एहने अनुभव करैत जखन भोजन बनबैत काल भनसाघर में लथपथ पसीना सँ भ जाइत अछि देह, झट द आबि बैस जाइत छी पंखा तर में। डाइनिंग टेबल संग लागल कुर्सी पर ओ मोन पैर दैत अछि बाबाक कोरा। ठीक ओहिना कार्यालय में कागज पत्तरक ओल झोल सँ असोथकित भेल मोन केँ काठ वाला सिधका कुर्सी पर करैत छी स्थिर। अपन पूरा शरीरक भार केँ ओहि कुर्सी पर द कनी काल लेल भऽ जाइत छी निश्चिंत। लगत अछि सहारा देने ठाढ़ छथि पिता। घर में राखल तीन सीटिया सोफाक संग एक सीटिया सोफा अछि ओहो कुर्सीक रूप। दिन भरिक कर्तव्यक निर्वहन सँ साँझक चाह पीबाक समय लगैत अछि अपन। तखन निश्चिंत सँ चाहक चुस्की लेबाक लेल छी बैसैत ओहि पर। तखन ओ कुर्सी नहि मायक कोरा सन लगैत अछि जे अपन जिम्मेदारी बढ़ैत रहला पर हेरा जकाँ गेल छल। जहिया कहियो एहि कुर्सी सब पर पड़ल गर्दा के झाड़ैत छी तऽ एकर चमक देख लगैत अछि ई कहि रहल अछि आभार। ठीक ओहिना जेना कखनो पलंग अथवा चौकी पर बैसवा सँ निकलैत चों चोंक आवाज एहि काठक समानक आवाज नहि छी, ई हमर पूर्व जन्मक पोसल कोनो चिड़ैक छी आवाज। पूर्व जन्मक कोनो ने कोनो संबंध ई अपन होयबाक आभास करबैत अछि। हमरा संग हमर चारू कातक ई काठक समान मशीनी युग में दूर होइत संबंध लेल काठ सन बन गेल लोक के प्रश्न पूछैत रहैत अछि। हमर वैलेंटाइन जकर प्रेम सँ अंकुरित भऽ फसैत गेलहुँ एहि माया जाल संसार में, भेल जखन कखनो आभास जीवन कठिन होयबाक ओकर एकटा स्नेहसिक्त बोल हम छी ने कऽ दैत अछि दृढ़ात्मा के। चलबाक साहस, लड़बाक उपक्रम, जीवाक भरोस भेटैत अछि। ओकर एक बोल हम छी सँ अपार कष्ट आकि दारुण दुखोमे ओकर एक शब्द कऽ दैत अछि ठाढ़। जीवनक दावानल सँ तपैत पबैत छी अपनाके लोहा सन कठोर। अपन अक्षमताके तोड़ि देबाक क्षमता आबि जाइत अछि ओकर एक शब्द हम छी सँ। तऽ ओकर स्पर्शसँ होइत छी सबल, बदलि जाइत अछि धार नोरक। ठोरक बेहुसब छैक ओकरे प्रार्थनाक प्रतिफल। नपबाक संसारक दृष्टिसँ ओकर दृष्टि छै अलग। बना दैत अछि खास हमरा ओकर एकटा बोल हम छी नहि

माय एज ओ हमर आ ओ एज हमर वैलेंटाइन। जनसेवा ट्रेन मिथिला सँ चलैत अछि जनसेवा। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मधुबनीक सब जातिक लोक एहि ट्रेनमे लदम लद भऽ कऽ भेल अछि विदा अपन आ अपन परिवारक पेटक लेल। स्टेशन पर ठाढ़ अछि जनसेवा। खिड़कीमे से खाली मुड़िए मुड़ी देखाइत अछि। कारी कारी पिट्ठू बैग पीठ पर लदने जेना घोड़ा लदैत अछि अपन पीठ पर लदान। ओहि लदल झुंडमे देखाइत छैक ओकरा सभक बैगक कोनो टूटल चेन, बगल के पॉकेट में लटकल पियर भेल बोतल, गाम से छूटल जेबाक दुख आ अभाव में त्रस्त एकटा लोक समूह जे अछि लोक कम आ कंकाल बेसी। भीड़ छै ठसम ठस, गेट पर तक बैसल छै लोक कि तखने होइत छै हल्ला। गेट पर से बैसलाहा में से केओ खसि पड़ल अछि नीचा किनसाइत। सब गुलगुल करैत छैक अपना में, ओकरा नींद लागि गेल रहै कि छुटि गेलै हाथ,

0: आ अभाव में त्रस्त एकटा लोक समूह जे अछि लोक कम आ कंकाल बेसी। भीड़ छै ठसम ठस, गेट पर तक बैसल छै लोक कि तखने होइत छै हल्ला। गेट पर से बैसलाहा में से केओ खसि पड़ल अछि नीचा किनसाइत। सब गुलगुल करैत छैक अपना में, ओकरा नींद लागि गेल रहे कि छूट गेले हाथ आ कि रील बनबा में छल मस्त नहीं रहले सो। आ ट्रेन अपना भीतर लेलक खींच, दू टुकड़ी भेल शरीर सँ छन्न द छूट गेले प्राण। लोक सभक अनघोल पर गार्डक संज्ञान पर ड्राइवर लगौने छल ब्रेक, ता ओकर जीवन में सदाक लेल लागि गेल छल एक ब्रेक। कनी काल घेंघाउजक बाद खुजि गेल छल ट्रेन अपन गंतव्यक लेल। लोक सबके गप करबाक लेल बेस मसल्ला बिहेल गेल छल ट्रेन। केओ मरलबाक दोष, केओ भगवानक दऽ रहल छल दोष। बेर बेर राजनीति पर चलय लगले गप अध्या, जे छल ट्रेनक टिकटक बाद सबसे बेसी आवश्यक चर्चा। सरकारक नीति पर होमय लागल छल एक बेस अनुभवी घमर्थन। जनसेवा ट्रेन ने एहि जनता सबके देखैत लागि जाइत अछि ठकमुरी, जे ओकर एहि अकाल मृत्युक समाद पहुँचत कहिया धरि ओकर पुरजन परिजन लग। जे बैसल हैत आसरा तकैत जे कहिया कमा कऽ ऐता पप्पा, कमा कऽ औत बेटा आ कमा कऽ अयतै ओकर मनसा, आकि बीचैमे ई असमय घटना। नहि जानि कहिया धरि गहऽ पड़तैक ई दूर देश आ ओहि दूर देशमे पेटक खातिर देह तोड़ि कमेबाक दंश। रंगरेज संसारक बाँचल दूटा रंग, प्रेम घृणा। दुनू रंग में से कोनो एक रंगक ठोप सँ अछि बदलि जायत पूरा जीवन। की माघ, की फागुन, की सौन, की भादो आ कि अगहन आ कि पूस। जेठ सेहो अहाँक रंगमे लगैत अछि रंगायल। भरि सालक जेठहि मास रहैत अछि भरल भारी ताप सँ। जीवनमे सेहो कखनो कहियो अछि अबैत जेठ मास। घर से बाहर धरि, मन से शरीर धरि लगैत अछि उठ हाय दलमा। ओहि ताप सँ ब्योला भऽ जाइत छैक पूरा जीवन। ओहि जीवन में रंग भरि देबाक छी रखैत अहाँ इच्छा। रौद सँ बचाय, बचबैत बरखा सँ सेहो चाहैत छी बचाव अपन देल रंग के। नहि होइ भट रंग सदिखन एहि ब्योत में लागल रहैत छी अहाँ। कहुखन जीवनक रंग बदलि जेबासँ अछि लगैत जेना एहि जीवनक उज्जर रंगमे अंचोके कारी रंगमे झरिझ भऽ गेल, आ पूरा जीवनक रंग स्याह भऽ गेल जेना। अहाँक स्नेहक आल रंग जीवनक ओहि स्याह रंगमे पड़लासँ रंग बदलि दैत अछि। स्नेहक आल रंग पड़लासँ जीवनक आल रंग आब लगैत अछि कत्थई। जीवनक तार सुन्दर रागसँ झंकृत होयबाक लेल अछि उद्यत। अहाँ खगता सदिकन अछि रंगरेज, रंगाईमे की दियो अहाँके। अहाँ लग सब किछु तुच्छ, अहाँके ईश्वर कहबाक मोन होइत अछि, मुदा अहाँ तऽ हमर पिता छी जे भरैत छी सम्पूर्ण जीवनमे नित नव रंग, बिहलैत छी हमर जीवनक मरुभूमिमे आशक हरियरी। अधिकार विहीन नैहर, किएक आओ हम नैहर अनुज छी। चलौने जे रीत जन्मैसँ हमर हृदयमे भेल अछि बेर बेर झाँझर, पिता ससुर आ पतिसँ अछि कचोटित मौन। रहितै तैया जँ कलयुग डिरिया नहि पड़ितै, भरी कोख लेने रने बने। कहाँ ए अधिकारसँ आग्रह कहने छल सर समाज, कऽ रहल छह जेना आइ तू आह्लाद। पिता अपन अधिकारसँ तहिए कऽ देने छलाह मुक्त, नहि भेलनि इच्छा लऽ अनिये अपन गाम ठाम अपन। किएक जाय पड़लै अयोध्या छोड़ि बन, कि नहि छलैक हमरा लेल मिथिलाके को घर पावन। छल जेहने अयोध्या भऽ गेल ओहने मिथिला। कहिया की अनुज छी दुखी हम आइयो, अपन संग कैल गेल ओहि व्यवहारसँ। धर्मक निर्वहनमे छल सब लागल, दान देनिहार आ ग्रहण केनिहार राजा जनक आ कि राजा राम। नहि लगैत छ अनुज कर्तव्य पर पड़ि गेल छ।
1: एखन किछु काव्य पाठ हमसब सुनलहुँ निक्की प्रियदर्शनीसँ। अब देखू जे सिंगारहारक अंत अंतमे हमसब आबि गेल छी। जेनाकि हमरा सबके बुझल अछि जे सिंगारहारमे हमसब शब्द विमर्श सेहो करैत छी, मने किछु शब्दपर गपशप सेहो करैत छी। तऽ आओ आइ

किछ शब्द पर गपशप कर ली। एकटा शब्द अछि उसरब। उसरब माने होइत अछि काज करबाक अवगत, मने कोनो काज केकरो जल्दी जल्दी कयल होइ छै तऽ कहै छै जकरा बड उसरै छै, मने करबाक क्षमता, कोनो काज के करबाक क्षमता के उसरब कहैत छियै। आ उसारब, उसारब माने होइत अछि राखब या राखल वस्तु, मने कहै छै धैल उसारल, मने राखल जे कोनो वस्तु छै धैल छै उसारल छै तऽ ओ मने राखल वस्तु सँ के लेल ओकर उपयोग कयल जाइत अछि एहि शब्द के। तहिना एकटा शब्द अछि उस्सर। उस्सर मने होइत अछि जे जमीन उपज नहि दैत अछि, उपजाउ नहि होइत अछि तकरा उस्सर कहल जाइत अछि, जाहिमे कोनो अनाज नहि भऽ सकैत अछि तकरा उस्सर कहल जाइत अछि। ई छलै आजुक शब्द विमर्श। आब एकदम अंत अंत में हमसब आबि गेल छी सिंगरहार के, तऽ किया नहि चलैत चलैत एकटा आर मैथिली गीत सुनैत चलिए।

काशीनाथ झा किरणक गाओल एहि विद्यापति गीतक संगे सिंगरहार समय एते सम्पन्न होइत अछि। सोनू के चलवाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।

0: अभी हम मैथिली कार्यक्रम सिंहहार सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
2: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति

0: पार्टी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहाँ पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुवाई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था।

0: केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है। उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान

0: अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
2: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the global south. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major economies on the sidelines.

0: ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है। उर्दू खबरों के लिए एविया फ्रांस से अंकित कुमार।
1: इससे कबल आज दिन में वजीर आजम कल शुरू हुए समिट में शिरकत के लिए दो रोजा दौरे पर एविया पहुंचे। अपनी आमद के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने लिखा कि वो अहम आलमी मामलात पर दुनिया के लीडरों के साथ बातचीत और तबादला ख्याल के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत एक ज़्यादा पायदार और खुशहाल कुर्रा अर्ज़ की जानिब इज्तिमाई कोशिशों में पेशरफ्त के तई पुरअज़्म रहेगा। समिट से अलग वजीर आजम कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, इंग्लैंड के वजीर आजम केयर स्टामर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। आज शाम देर गए वो सदर मैखां की जानिब से मुनक्किदा एक शानदार इशाइये में शिरकत करेंगे। समिट के दौरान एक और अहम बात वजीर आजम मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल होने वाली मुलाकात है। दोनों लीडरों के मुतालिक तवक्को है कि वो कई शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल करेंगे, साथ ही बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी सतह पर रूनुमा होने वाले अहम वाक़ियात पर तबादला ख्याल करेंगे। फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर वजीर आजम मोदी कल शाम पेरिस पहुँचेंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज फ्रांस के नीस मैसेना में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का आगाज़ किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि फ्रांस के बावकार खुर्दा कारोबारी मकामात में से एक में भारत के आलमी दर्जे के डिजिटल अदायगी के प्लेटफॉर्म को लाना UPI की आलमी पैमाने पर तौसी में एक और नुमाया कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि ये पहल बड़े पैमाने पर भरोसे, बिला रुकावट और इंटर ऑपरेबल डिजिटल हल फराहम करने की भारत की सलाहियत का मजहर है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि यह आगाज़ भारत और फ्रांस के दरमियान इक्तसादी और तकनीकी ताल्लुकात को मुस्तहकम करता है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जाम शराकत दारी की बढ़ती हुई गहराई और उमंगों की अक्कासी होती है। बड़े सनती मुल्कों के ग्रुप ऑफ सेवन समिट के मौके पर अमरीकी इत्तेहादियों ने आज रूस यूक्रेन तनाज़े के 4 साल से ज़्यादा अरसे के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन की हिमायत के एजेंडे के आगे बढ़ाने के लिए काम किया। मेज़बान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखां ने कहा कि वो ये ख्वाहिश करते हैं कि ट्रंप को तरगीब दी जाती रहे कि वो यूक्रेन की हिमायत और रूस पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी रखें ताकि किसी अमन माहदे तक रसाई में मदद मिले। ट्रंप के तहत अमरीका ने यूक्रेन के लिए इमदाद में कटौती की है। फ्रांस और उसके यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक अब कीफ को फौजी और माली इमदाद फराहम करने वाले बड़े ममालिक बन गए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी आज सुबह वर्किंग इजलास में G7 लीडरों के साथ शिरकत की, लेकिन मुज़ाकरात जल्द ही ख़त्म हो गए क्योंकि लीडरान सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट के लिए जमा हुए थे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में आला सतह की ज़राअत से मुतालिक एक मीटिंग में शिरकत की और 2026 की खरीफ की फसल के लिए मुल्क भर में तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़ारत ज़राअत ने एक बयान में कहा कि एलनिनो की मुमकिन सूरत हाल के तनाज़ुर में वज़ीर मौसूफ ने कपास की पैदावार में इजाफे, दालों में खुद किफालत को हासिल करने और कम बारिश वाले ज़िलों में हंगामी नौइयत के मनसूबे तैयार रखने पर खसूसी ज़ोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज़राअत के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मीटिंग में सीज़न के दौरान नामवाफिक मौसमी सूरत हाल से ज़राअत और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी तौर पर तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाने को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। जनाब चौहान ने हिदायत दी है कि उन अज़ला में जहाँ कम बारिश या गैर मुसावी बारिश होने का इम्कान है, पेशगी तौर पर तमाम इकदामात किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अज़ला की शनाख्त की जानी चाहिए और रियासतों के साथ मिलकर फसल के हिसाब से हंगामी मंसूबे तैयार किए जाने चाहिए ताकि मौसमी चैलेंज की सूरत में फौरी तौर पर किसानों को मुतबादिल आलात और ताउन फराहम की जा सके। नई दिल्ली से सुपन्ना सेकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज ऐलान किया है कि तारीखी ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियांग में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने मुल्क के दिफा में गोरखा फौजियों के जोश व जज्बे और कुर्बानियों के तई खराज अकीदत पेश किया। जनाब अधिकारी ने मजीद ऐलान किया कि रियासती पुलिस फोर्स

0: में जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी, जिससे गोरखा जवानों को बड़ी तादाद में रोजगार के मौके मिलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती भर्तियों में कम से कम 30% सीटें ख्वातीन के लिए रिजर्व होंगी। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम दहशतगर्दी के खिलाफ नरेंद्र मोदी हुकूमत की कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बरस 6 और 7 मई की दरमियानी शब को ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक वाज़े पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता, लेकिन दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई सुर्ख लाइन खींच दी कि अगर दहशतगर्दी किसी की स्टेट पॉलिसी है तो उसे एक बराह रास्त और कुव्वत से भरपूर रद्द अमल का सामना करना होगा। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में वाक़ दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया। इस कार्रवाई में 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। इधर 7 पड़ोसी मुल्कों तक फैली 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी ज़मीनी सरहदों के तहफ़ के लिए आज भारत मुल्क को अवलियत देने के असूल की रहनुमाई में अपनी मुअसर खारजा पॉलिसी पर अमल कर रहा है। साथ ही वो दिफा के शोबे में खुद कफील होने की जानिब पेशरफ कर रहा है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने कहा कि आसाम में खुली सरहद एक बड़ा मसला था और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मामले से निमटने के लिए तेज़ी के साथ काम किया है। NDA हुकूमत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई पूरी तरह पुरअज़्म है। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
0: ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने पेरिस मुआहदे की दफा 6.2 के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM पर अमल आवरी के जवाबित को इख्तियार किया है, ताकि आब हवा से मुतालिक कार्रवाई, जहरीली गैसों के अखराज में कमी और पायदार तरक्की की स्कीमों के मुतालिक तआवुन को फ़रोग दिया जा सके। माहौलियात, जंगलात और आब हवा की तब्दीली की वजारत के मुताबिक अमल आवरी के जवाबित को क्रेडिटिंग के मुश्तरका मैकेनिज्म के लिए पिछले बरस दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाए तआवुन के मुफाहमत नामे के बाद इस बरस 8 जून को इख्तियार किया गया। ये मैकेनिज्म तख़फीफ के प्रोजेक्टों में शराकत दारी का एक खाका फराहम करता है, जिसकी रूह से भारत में जहरीली गैसों के अखराज में तख़फीफ या कतई ख़त्म किए जाने की बात की गई है, साथ ही पायदार तरक्की के लिए तआवुन की बात भी की गई है। ईरान ने आज कहा है कि अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के मुआहदे के तहत इसराइल को लिबनान से बाहर निकलना होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जनूबी लिबनान में इसराइल की जारी मौजूदगी अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाए मुफाहमत नामे की खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिका ने वजाहत नहीं की है कि आया लिबनान कतई मुआहदे का हिस्सा है या नहीं। इधर इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कल मुआहदे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला करार दिया था और कहा था कि इसराइल की अपनी तरजीहात हैं और वो जब तक ज़रूरी होगा उस वक्त तक लिबनान में एक बफर जोन में रहेगा। NEET UG 2026 का दोबारा इम्तहान 21 जून को होने वाला है और इससे कब सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर इस महीने की 22 तारीख तक बंदिशें आयद की हैं। इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक एजेंसी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। एक बयान में इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म को यह हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फ़ाल बनाए। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गरज चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह के मौसमी हालात बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साहिली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान निकोबार जजायर में भी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल ज़ैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश का اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے دو دنوں میں شمال مشرقی بھارت، تمل

नाडू, पुडुचेरी और कराईकल के बाद हिस्सों में भी तेज बारिश का इम्कान है। भारत की फेंसिंग एसोसिएशन FAI ने शमशेर जनी की 26वीं सीनियर एशियाई चैंपियनशिप 2026 के लिए भारत की सीनियर टीम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये चैंपियनशिप 19 से 24 जून तक दिल्ली में मुनक़िद होगी। भारत इस बावकार कॉन्टीनेंटल मुकाबले की पहली मरतबा मेज़बानी करेगा, जो कि एक तारीखी संग मील है। 30 से ज़्यादा ममालिक और 400 से ज़्यादा सरकर्दा खिलाड़ी इस मुकाबले में शिरकत करेंगे। भारत की 24 रुकनी टीम में 12 ख्वातीन और 12 मर्द शामिल हैं, जिसकी क़्यादत भारत की पहली और वाहिद शमशेर जनी की ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज रात अमरीका के शहर न्यूजर्सी में ग्रुप एक मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल के दरमियान मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। आखिर में ब्रिटेन की खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबराह इजलास में शिरकत की। वो आज रात कनाडा और बरतानिया के वज़राए आज़म नीज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ बाहमी मीटिंग भी करेंगे। वो कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा खरीफ सीज़न के लिए तैयारियों का जायज़ा लेने की गरज से आला सतह की एक मीटिंग की। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज़्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे में इसराइल को लबनान से अपनी फौजें भी वापस बुलानी होंगी। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

प्रस्तुत है विविधा कार्यक्रम। इयम् आकाशवाणी दरभंगा प्रस्तुता वर्तते इयम् संस्कृत वार्ता। विषय तु वर्तते संस्कृत भाषायाः संरक्षणम् एवं संवर्धनम्। संप्रति वार्ताकारः डॉक्टर देवनारायण झा वर्तते। प्रस्तुते असद दाऊद महोदयस्य वर्तते।

0: सर्वम् अपि भारतीया भाषा सारल्येन अवगन्तुं शक्यन्ते। यतो हि संस्कृतम् अतिरिच्य सर्वासु भाषासु समधिकं यावत् संस्कृतशब्दाः एव प्रयुज्यन्ते। वैदेशिकेषु अपि भाषासु महती संख्या संस्कृतस्य वर्तते। एवं विज्ञायते यत् भाषादृष्ट्यापि संस्कृतभाषा सर्वासु भाषासु श्रेष्ठा स्पृहणीया च वर्तते।
1: भवन्तः संस्कृतवार्ता अशृण्वन्। सम्प्रति वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर देवनारायण झा। प्रस्तुति असद दाऊद महोदयस्य आसीत्। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देववाणी कार्यक्रम। नमो वाकम प्रसासमहे। आकाशवाणी दरभंगातः देववाणी प्रसारणे भवताम भवती नाम च सुस्वागतम्। देववाणी कार्यक्रमे भवन्तः श्रृण्वन्ति सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक गतिविधिषु आधारित रा

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एक फनकार कार्यक्रम, इसके अंतर्गत सुनिए कुछ लोग कुछ फिल्म संगीत। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रचनाकार गीत रचनाकार मिथुन के कुछ गीत।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म हिट स्टोरी 2 का यह गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। शब्द रचना मिथुन का है और संगीत निर्देशन भी मिथुन का है।

अब सुनिए जिस्म टू का यह गीत, सोनू कुमार की आवाज में, संगीत निर्देशन मिथुन का है और शब्द रचना भी मिथुन का है।

अभी आप सुन रहे थे मर्डर टू का यह गीत क्षितिज तारे सैम भट्ट एवं मिथुन की आवाज़ में, संगीत निर्देशन भी मिथुन का था और शब्द रचना भी मिथुन का था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म मर्डर टू का यह गीत सुनिए मोहम्मद इरफान अरिजीत सिंह एवं सैम भट्ट की आवाज़ में, शब्द रचना मिथुन का है और संगीत निर्देशन भी मिथुन का है।

अभी आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से एक फनकार कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज के फनकार हैं मिथुन, जो एक संगीतकार भी हैं और रचनाकार भी हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सनम रे का यह गीत। गायक कलाकार हैं मिथुन फीट एवं अरिजीत सिंह। शब्द रचना मिथुन का है और संगीत निर्देशन भी मिथुन का है।

अरिजीत सिंह एवं मिथुन फिट की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सनम रे का यह गीत। इसी गीत के साथ आज का फनकार कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म तकदीर का यह गीत, लता एवं साथियों की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी का है और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आप सुन रहे थे तकदीर फिल्म का यह गीत। लता मंगेशकर, सुलक्षणा पंडित, मीना पाटकी एवं इला देसाई की आवाज़ में। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म नूरी का यह गीत सुनिए। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर एवं नितिन मुकेश। बोल हैं जयशंकर। श्रोताओं क्षमा करेंगे, संगीत निर्देशन खयाम का है और बोल हैं जन नसीर अख्तर का।

अभी आप सुन रहे थे नूरी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाज में। अब सुनिए बैजू बावरा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर शमशाद बेगम मोहम्मद रफी एवं साथियों की आवाज में। शब्द रचना शकील बदायूनी का है और संगीत निर्देशन नौशाद का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बैजू बाबरा का यह गीत लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, रफ़ी एवं साथियों की आवाज़ में। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म गीत का यह गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हिमालय की गोद में का यह गीत। गायक कलाकार थे मुकेश। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं आकाशवाणी के दिल्ली।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: captured New Jersey and United States tonight. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। समाप्त होती हमारी आज की ये सभा। कल प्रातः 5:45 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।